जिन जल सुखेत बढ़ायो कमल हेत बिन सुखे पवरा उन मार्ग निकस न पायो आप मान एक स्यो मोकीना मरे न जावे सदगी संगे सदगुर सबदी चीना रहाओ काम हित कुंतर लै फंक्यो ओ पार वस पयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उस ही हेत बिदारा दे कुटंब लोभ मोयो प्राणी माया कौल बटाना अतरच्यो कर लीनो अपना उन शोर सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुखेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्री प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए साध संग चिंत बिरानी छाडी अंग बुद्ध मोह मन बासन दे कर गढ़ा गाडी रगाओ ना को मेरा दुश्मन रहया नाम किसके बैराई ब्रह्म पसार पसायो पीतर ता गुर ते सोजी पाई सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरगा ता मेल कियो मेरे राजन बिन सो ठीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल मैयल सर्ब निवासी नानक रमैया डीठा तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिन ओए आए मां आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए अब होए राम जसो मन गायो पयो परगास सदा सुख मन में सदगुर पूरा पायो रहाओ गुण निधान दिल पीतर वसया ता दुख परम पौ पागा पई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोथा का होमे रोग मिटे कृपा ते जानते पए बिबाका गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जनते काढे तिस गुर कह कुरबाणी तनासरी महला पंजवा जिस का तान मन तान सब तिसका सोई सुड़ सुजानी तिन ही सुनिया दो सुख मेरा तौ बिदनी की खटानी जी की एक ही पैमानी आवर जदन कर रहे बहुत तेरे तेन तिल नहीं कीमत जानी रगाओ अमृत।

अब रह गीत हर चंदौरी बन हर पात्रे एह तुहारो बीत रहाओ। चंदन लेप होद देखो सो गर्द पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचि आवत विखे ठगौरी प्रीत। उत्तम संत पले संजोगी ए जुग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ ताज बद रहे जीत जन्म।

पूरी जो प्रभु के मन पाई, नाम जपत तृष्णा साबुरी है, नानक त्रिप्त अघाई। तन्हा श्री महला पंजवा जिन कीने वसे अपने त्रै गुण, पावन चतुर संसारा, जग स्नान ताप थान खंडे, क्या यो जंत विचारा। प्रभु की ओढ़ गई तो छूटो, साध प्रसाद हर हर हर गाए, बिखे ब्याल तब हुटो। अरहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए, न मोहे ओ डीठी, ऐसी ठगौरी पाए पुलावे, मन सबके लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता, उन कर कर मेल्यो दुआ, किसी वाद काड किसी पै, सगले लर लर मुआ। औंबलगारी सतगुरे अपने, जिन यो चलत दिखाया, गूजी पाए जले संसारा, भगत ना व्यापे माया। संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काट।

हो अनकबीरी समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम की सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना

आद अंत दयाल पूर्ण तिस बिना नहीं कोए, जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए, वेद सिमरत कथय सासत भगत करे विचार, मुक्त पाई गे साध संगत बिरस जाए।

पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम न आवे, हर हर नाम ते आया, ताते मोए धारी ओड़ गोपाल, सरन परयो पूर्ण परमेसर, बिनसे सगल जंजाल, रहाव, सुर्ग मृत पयाल भूमंडल, सगल व्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल तारन, हर हर नाम ते आए, नारक नाम निरंजन गाइए, पाइए सर्ब निधाना।

मंगना, देखो पसार नयन, सुनो साधु के बैन, प्राण पद चित राख सगल है मरना रहाओ, चंदन चो अरस पोग करत अनेक है, बिखिया विकार दिख सगल है फीके, एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जान, तान तन अपन थाप्यो, हार जप न निमुख जाप्यो, अर्थ द्रव देख काच, संग नाही चलना, या कोरे कर्म पला, तिन ओढ़ गई संत पल्ला, तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना, पायो रे परम धान, मिट्यो है अवमान, एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवा, कर सतवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर एक सिमर एक सिमर, एक सिमर प्यारे, कल कलेस लो मोह मा पौजल तारे रघाओ, सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन निधान तारे, चरण कमल नमस्कार कुन गोबिंद बिचारे, साजना की रेन नानक मंगल सुख सुधारे, तनासी महला पंजवा कर अठवा दो पदे, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सास सास माले, हे लोक परलोक संग सगाई, जद कदम होए रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए ना साके जाले, रहाओ निर्तन कौ तन अंधले कौ टेक, माद दूध जैसे बाले, सागर मैं भोयत पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले, तनासरी महला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय संचाई, नाम निध रिद सिद्ध, हर लागर ही जन पाई, संतन को आनंद सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का, हरा भरया सर्व ठाई रखाओ, ताको कोई ना पहुंचे नखारा, जाके अंग कुसवाई, जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत, नानक नाम त्याई, तनासरी महला पंजवा, दर्भवंत दर्ब देख गर्भ, पूंवंत अभमानी, राजा जाने सगल राज हमारा, त्यो हरजन टेक स्वामी, जे को अपने ओट समार है, जैसा बित तैसा होए वर्त, अपना बल नहीं हार है, रहाओ आन त्याग पै एक आसर, शरण शरण कर आए, संत अनुग्रह पै बन निर्मल, नानक हर गुण गाए, तनासरी महला पंजवा, जाको हारंग लागो इस जुग में, तो कई तगै सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता के, जाका सदगुर पूरा, ठाकुर गाई गे आत्म रंग,

सास सास पर पाले प्रस्यु लाग रे हो मेरा चीत आद अन प्रसदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन बिलाल पए साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आ

काथे अगोचरा पतत उदाहरण नाम तेरा अंतरजामी नानक के स्वामी तरबत पूर्ण ठाकुर मेरा तनासरी महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर।

अगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव शरणाई तनासरी महला पंजवा। तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरस नाम थे आया जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी।

अनिस्तारा समुंद सागर जिन खिन में तारा रहाओ। कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम ते आया। बंधन काटन हर स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

साधो यो जग परम भोलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुध बनता।

जे कड़माए पछानो हराओ पर निंदा उस्त नै जाके कंचन लो समानो हरग सोवते रहे अतीता जोगी ताए बखानो चंचल मान दहत को तावत अचल जाए ठहरानो ओ नानक हे बिदको जो नर मुक्त ताए तुम मानो तनासरी महला नामा आप मैं कौन उपाव करो जेवद मन को संसार चूके।

त्याग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ रख रख चरण तरे विचारी दुबदा छोड़ पए निरंकारी मुगत पदार्थ हरस चाखे आमन जान रहे पुर राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मैं हंस हंस मैं सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नार ना पुरख कहो को कैसे तिर पवन जो तरहे लिव लाई तुर नरनाथ सचे सरनाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वशल पे काटन हारे होमे मार मिले भगत हारे अनक जन कर काल संताए मरण लखाए मंडल में।

ज्ञात सर संजम हृदय समाये, चौथे पद को जे मन पतियाए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द परम पौ पग, तूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साज स्वरूप, तनासरी महला पहला, सहज मिले मिले या परवान, नात स्मरण न आवन जान, ठाकुर मैं दास दास मैं सोए, जय देखा ते अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाइये, बिन गुर फेटे मर आइये जाए।

प्रेम भगत प्रामन पति आया पड़ पड़ फूले चोटा खावे बहुत सियाण आवे जागे नाम जपे पो भोजन खाए।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई प्रभ सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी फिर कर सोहे नार।

एक नाम निरंजनो जियो, तू दाता दातार सर्व दुख पंजनो जियो, दुख हरत करता सुख स्वामी शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा पल एक मह तराया, पूरे या सर्वताई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नांग सदा सिमरी सर्व दुख पए पंजनो, आप लिगे लड़लाए कृपा तारिया जियो, वे निर्गुण नीज अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो, दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया, जी जनसा वस तेरे सगल तेरी सारिया, आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया, बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया, तेरा दर्श अपार

छाड़ अमृत ताहे बेख खाई, तज परम कर्म विद निखेद, राम नाम लेही गुर प्रसाद, जन कबीर राम कर स्नेही।

जंगम जाती तायो तूप दीप नहीं बेदा तायो पूजो पाती ताया बो खंड खोजते नविंद पाई ना कश आए बो ना

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी बिन गाक मीका काखा। रतन गा गुर साधु देखे ताब रतन बिकानून लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। हरहाओ मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परमु गावारी माया पोयंग बिख चाखा। हर घर साग मिलो जननी के हर साधु शरण हमारा का। हर अंगीकार करो प्रस्वामी हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है तो वड़ अगवड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखाण डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा हम बार कशु ना जाने गत मित तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना। हर कृपा तार दीजे मत ऊतम कर लीजे मुग्ध सयाना। मेरा मन आलसिया उगुलाना। हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट।

जो अमली अमल लुभाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी तेन तुर पाग पुराना। तेन हम चरण सिरे वे खिन खिन जिन घर मीठ लगाना। हर घर कृपा तारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सतगुर जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुरबाना। जैत सरी महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया। हार रसक रसक फल लागबा माया पुयांग ग्रस्यो है प्राणी। पुर बचनी बिसगर काटबा मेरा मन आराम ना रस लागबा। हर किए पतत पवित्र मिल साध गुर हर नामे हर चाख बार हाउ। तन तन वड भाग मिलो गुर साधु मिल साधु ले उन्मन लागबा। तिसना अगन बुझी सात पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाखीन तुर पाए जिन स गुर दर्शना पाएबा। ए दूजे पाए पवे गर्भ जोनी ता बिरथा जन्म तिन जायबा। हर द्यो बिमल मत गुर सत पग सेवै हम अगर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण सत पग मांगे हर होए दयाल दिवाएबा। जैत सरी महला चौथा जिन हर हिरदय नाम ना बस्यो तिन माद की जे हर बन जा। तिन सुनी दे फिरे बिन नावे ओए खाब खा मोए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा। हर हर कृपाल कृपा प्रोतारी गुर ज्ञान दियो मन समझा। अरहाओ हर कीर्त कालजुग पद उत्तम हर पाई गे सदगुर माजा। हों बलिहारी सदगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन सद मिलो वडभागी सब केलबख गए गवाजा। सदगुर साहु पाया वडदाना हर किए बहुगुण सांझा। जिनको कृपा करी जग जीवन हर उरतारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जैत सरी महला चौथा सत्संगत साध पाई वडभागी मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे हर अमृत तारस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा। मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिले उलाए च पीड़ा। अरहाओ सागत बंद पय है माया दिख संचय लाए ज कीड़ा। हर के अर्थ खर्च न साक है जम काल सह सिर पीड़ा। तेन हर अर्थ श्री लगाया गुर साधु बहु श्रद्धा लाए मुख तूड़ा। पलत पलत हर शोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध।

रहिए। साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लइए। सदा सदा हम शोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा। नानक बारक तुम माध पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवां तार दूजा दो पदे एक ओ अंकार। सदगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम। अबर कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण गाम रखाओ। राज मार अनेक भोग रस सगल तरवर की शाम। ताए ताए बोबिद को तावे सगल निरार्थ काम। बिन गोविंद अवर जे चाहो दिसे सगल बात है खाम। पौ नानक संतरे न मांगो।

इन्नी आप रघाओ जिसके से फिर तिन ही संभाले तिन से सोग संताप। आदे राखी जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरबाना।

परे उधर बारे कोड अपराध खंडन के दाते खुद बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साल संग परम गत पाएगे माया रच बंद हारे चरण कम संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा हर तीजा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद हां हां लपटे उरे मूड़े पशु न थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ जो प्राई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहु चित लायो सो संचयो जिद भूख तसायो अमृत नाम तुसा नहीं पायो काम क्रोध मोह कूप परया गुर प्रसाद नानको तरया टोडी महला पंजवा हमारे एक हरी हरी आन अवर संजान ना करी रखाओ वड़े पा गुर अपना पायो गुरमुख हर नाम दृढ़ायो हर घर जाव ताप्रत नेमा हर घर चाहे कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जात घर गुनिया मां आनंद कीर्तन घर सुनिया कहो नानक जिन ठाकुर पाया सब कित के

कर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोर देखन को दर्शन प्रभ नीत पाठ काट तो सत्संग मोर मन अपने को मैं हर सगा कीत संत प्रसाद पाए मन निर्मल हर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत।

परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत तारो प्रमान आड़ परसना गुण गावे जद पूर अगावे समरथ।

दय दिस रब रहा जिस तुमर अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जिस गावे करते ते दिन कभो न मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बसूर सुख संपत ओ इस जी के बिन हर नानक जाने कूर टोडी मोहल्ला पनवा माई मेरे मन की प्यास एक न रह न सको बिन प्रीतम दर्शन देखन को तारी मन आस रखाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तनते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा फेटे गुण तास सांत सहज सुख मन उपजयो कोड़ सूर नान परगा।

सुंदर सुगुण चित्र साबित दास निवास भक्त गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म खू बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पै बिस्मद आन बीओ दूसर लावन रसना सिमर सिमर जह जीवा नानक दास सदा बल जावन टोडी महला पनवा माई माया चल तरन की अग्न मेघ की छाया गोविंद भजन मिन हड़का जाल रखाओ छोड़ सियान बहुत चतराई तो कर जोड़ साध मग चल तिमर स्वामी अंतर जामी मारख देखा यो उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागीन समत नहीं खल प्रेम भगतरा चे जन नानक हर सिमरन दैन पै मल टोडी महला पनवा माई चरण गुर मीठे वडे भग देवे परमेश्वर कोड़ फला दर्शन गुर डीठे रखाओ गुण गाव अचुत अविनाशी काम क्रोध बिन से माटीठे अस्त्र पय सज रंग राते जन्म मरण बहोर नहीं पीठे बिन घर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक ना बिहून चले सामूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर घर नाम चिता रहा सहज आनंद होवे दिन राती अंकर पलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो बड़पागी क्या को अंत न पारा वारा कर गए काल योजने अपना बिरसा गिर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बौड़ न संकट द्वारा नानक शरण गई स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा टोडी महला पुनवा माई मेरे मन को सुख ओड़ आनंद राजसुख पुगवे हर सिमरत बिन से सब दुख रखाओ ओड़ जन्म के किल विख नासे सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण पैयासा दर्शन भेटत उतरी पुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न तुख टोडी महला पनवा हर हर चनर दे उर थारे सिमर स्वामी सतगुरे अपना कार्य सबल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर हर तीर्थ तत् विचारे गुण गावत अतुल सो पाया ठाकुर अगम अपारे योजन पारब्रह्म अपने कीने चिंता भावर कशना बिचारे नाम रतन हुन जब जब जीवा हर नानक कंठ मझारे टोडी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो का अपनी अदमाई उर्जो कनक कामनी के रस न कीर्त प्रव गाई रहाओ जग झूठे को साज जान कर तसे उपजाई तीन बंध तिमर नहीं कबू खुद जो संग सगाई मगर हो माया मैं निस दिन छुट्टी न मन की काई है नानक अब नाय अंत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगता की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर चल की माशली चरे खजूर ताए रे बग बादलायो जिन घर पायो तिने छिपायो रहाओ पंडित होए के वेद बखाने मूर्ख नाम जो रामे जाने कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पत पवित पहे राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी व्रत रहे काहे को तीर्थ जाई पंडित नाम देव सुकृत सुमत पहे गुरमत राम कहे को ना बैकुंठ गए तीन शंदे खेल अच्छे रहाओ कुंभार के कर हंडी अच्छे राजा के कर संडी गो बामन के कर रांडी अच्छे रांडी संडी हांडी गो पानिये के कर हींग अच्छे पैसर माते सींग गो तेवल मध्य लीग अच्छे लीग सीग हीग गो तेली के कर तेल अच्छे जंगल मध्य बेल गो माली के कर केल अच्छे केल बेल तेल गो संता मध्य गोविंद अच्छे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम अच्छे राम श्याम गोविंद गो अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध शिष पावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम
खड़ दर्शन गावे राम। शंकर क्रोड़ ते तीस ते आयो, नहीं जान्यो हर मरमाम। सुर नार गण गंधर्व जस गावे, सब गावत जेत उपाम। नानक कृपा करी हर जिन कौ, ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा, मान मेल संत जना जस गायो। हर हर रतन रतन हर नीको, पुर सद गुरु दान देवा।

तब हर हर हर जल त्यायो जन नानक कौ हर भेटे स्वामी दुख होमे रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना।

जप मन राम नाम निस्तार, कोट कुटंतर के पाप सब खोवे। हर भवजिल पार उतारा रखाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निकट बस्त कछ नजर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो सहो सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा।

तन मैल न पावे, विण कर्मा किछ पाइए नाही जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती, माया माए समाणी, इन्नी बाती सो पाइए नाही भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे, किन्नी बाती सो पाईए, जो कुछ करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए।

चेतना है तो चेतल है, निर्दिन मय प्राणी छिन छिन औध विहात है, फूटे कर जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना, अजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दिन उपजिया संग ही, सो पी संग न होया रहाओ, मात पिता सुत बंद जान हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्योहार है जको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो, तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कयो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मनिहो लगायो, काल फास जब गल परी

अमीन, तेरा नाम है अदारा अरहाव करीमा रहीमा, अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी, देह लेह एक तू दिगर को नहीं, तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी, नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी, हल्ले यारा खुशखबरी, बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ, नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ, कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी, द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी।

रसना नाम जपोता मथिये इन विद अमृत पावो मन संपट जित ससरनावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहेब रब तरहे कहंदे कहे कहे कहे जावे तुम सर अवर न कोई भगत हीन नानक जन जंपे आओ सालाही सच्चा सोई सूफी मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसे ना बाहर जाए अमृत छोड़ कहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो वो चाकर साचे केरे रहाओ ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बंधया सब जग पवे।

पहला कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना घोटम कालड़ी मस तोत्या झूठ न उतर जे सो तोवा तिस

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, ये को भय अलाए, अरहाओ जैसा बीजे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगय पुछ न हो गई, जे सण नीसा

कामना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही महला पहला कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाई है निजर चरे सह तुन लागे करगी परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजों सिंगी वाजे तौ निरभौ पल पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तौ

ढूंढ ढूंढाई, सतसंगत मिल हरस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई। सूफी महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर का नाम सुमाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ। हर रंग कौ लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मानमुख मुग्ध नर को रा होए, जे सो लोचे रंग न होवे कोय, नजर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सूफी महला चौथा, जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सह सुमाए, हर राजन चा खोजे पाई, तौ कत अंध साध लोभाई, हरहाओ गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मानमुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे। सूफी महला चौथा, तार छेवा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद नी जाहर जपतया, उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत, किसन उतरिया कार जिस जाए, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब ले जाए, अरहाओ अरविदास चुमार उस्तद करे, हर कीर्त निमख एक गाए, पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोभ शीपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका, मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नाग तिन को अनदिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूफी महला चौथा, तिन अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिन की वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर घर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा, अरहाओ तोर भगत जिना कौ बख्सया, हर अमृत पद पंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तेस हलत पलत मोकारा, से भगत से सेवका, जिन्ना घर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते घर पाईए, सिर निंदक कह पवे शारा, जिस कर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा, चौ पीढ़ी आद जुगाद विखिली कने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। सूफी महला चौथा, जिथे हर आरा दिए, तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसे, होरत बिद लया न जाई, हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई, अरहाओ सह संगति संघ हर तन खटिए, होर ते होर तो पाए, हर तन किते ना पाई, हर तने का वापारिया, हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वा के, हर तन लया न जाई, हर तन रतन जवे हर माणक, हर तने नाल अमृत वे लैवत, हर भगती हर लिवलाई, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, हलत पलत हर तने की, भगतां को मिली वडियाई, हर तन निरपौ सदा सदा, अस्तिर है साचा।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुद सृट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे इतना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगध नीचाण जन नानक तौहर बख्स लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवां कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई सांक

काम को ऊड़ खलोया, नाम की बेला पै पैसोया, अवसर अपना बुझे न एना, माया मोर अंग लपटाना, अरहाओ लोभ लहर को बिरस फूल बैठा, साजना का दर्शना डीठा, कहू न समझे अज्ञान गवारा, बहोर बहोर लपटे जंजारा, अरहाओ दिखे नाद कर्ण सुन पीना, हार ज सुनत आसमान कीना, दिट नाही रे पेघत अंधे, तोड़ जाए झूठे सब धंधे, अरहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करीजे, तार कृपा मुझे सार संग दीजे, तौ कुछ पाइये जो हो ये रेना, जिसे बुझाए इस नाम

ना जाए। सर्ब निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सूही महला पंजवा, प्राते काल घर नाम उचारी, ईत यूत की ओर सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण हो वह मन के काम रहाओ, प्राप्त अविनाशी रैन दिन गाओ, जीवत मर्त निचल पावे थाओ, सो साओ सेव जिद तोट न आवे, खात खर्चत सुख अनद विहावे, जग जीवन पुरख साध संग पाया,

प्रेम शोहा करत कसाई, निर्दय जंत तिर दया न पाई, अनक जन्म बीतियन फरमाई, तर वास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई, चरण सरण नानक गद पाई, अराग सूही

सेवक कौ पौ किश नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ, जो तेरे रंग रते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुर का दिलासा, नाम त्यायन सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्ट ले सद है, ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कल राखी मेरी, सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया, रखो रखनहारे, जित तू लावे ते तम लागे, क्या ए जंत विचारे, मेरे राम जी तू प्रवेंतर जामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी, अरहाओ आठ पैर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पोतरी है, आप त्या होइए सब रेणा, जीवतियां इउ मरिए, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जे दया करे प्रवे आपे, दीन दयाल किरपाल प्रस्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक साधर वाला, राग सूही अष्टपदियां, महला पहला कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

आओ छह सीगर कामन करे आवे ता सुहागन जा कंते पावे ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहेब सिमरिया जाई तुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लाभ हो पाई खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी परम फुलाणी हो में जाई ता कंत सुमाई तो कामन प्यारे नव निध पाई आनक जन्म बेशरत दुख पाया कर गए लेहो प्रीतम प्रवराया पंत नानक सौ है पी होसी जय पावे प्यारा तय रावेसी सूही महला पहला कर नावा एक ओंकार सदगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का

ओसाई राग सूफी महला चौथा अष्टपदियां कार दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीत में अपने तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने मैं हर घर नाम साहो गुरपूरे ते पाया अमृत अगम था हो रहा हौ सतगुर वेख विसिया हर नामे लगा प्यार कृपा करके मेलेन पाया मोख द्वार सतगुर बिरगी नाम का जे मिले ता तन मन देओ जे पूर्व होवे लिखिया ता अमृत सहज पीएओ सुत्या गुर सलाइए उड़द्या पी गुर आ लाओ कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ ता के तोमा पाओ कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मिलाए सतगुर मिले हर पाया मिलया सहज सुपाय सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखण का चाओ हौ तिस बिन तड़ी ना जीवऊ बिन देखे मर जाओ जो मछली बिन पानी है रहे ना किते उपाय तो हर बिन संत ना जीवई बिन हर नामे मर जाए मैं सतगुर से ती पिरहड़ी क्यों गुरबिन जीवा माओ मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रखाओ हर घर नाम रतन है गुरतुठा देवे माए मैं तर सच्चे नाम की हर नाम रहा लिवलाए गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दरड़ाए जिस प्राप्त सोल है गुर चरणी लागे आए अकथ कहानी प्रेम की को प्रीत में आखे आए ते देवा मन अपना निव निव लागा पाए सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजान सदगुर मीत मिलाया मैं सदा सदा तेरा तान सदगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओ अविनाशी पुरख है सब मैं रहा सुमाए राम नाम तन संतया साबत पूंजी रास नानक दर गए मनया गुरपूरे साबास राग सूही अष्टपदियां महला पंजवां कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद उर्ज रहो बिखिया के संगा मने व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कद पाई गए पूर्ण परमेश्वर।

दूर है, जैसी आसा तैसी मनसा, पूर है या परपूर है, हर की नार सो सर्व सुहागण, रांड ना मैं ले वैसे, नानक मैं वरसा चा पावे, जोग जोग प्रीतम।

जाई मन मजी वधाई। जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर।

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगासा अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया साथन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे घर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सारागी साज शब्द लिवलाई अनदिन सहज रहे रंगराता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रवंत्र जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह सुमाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो प्र

अंतरचितराई थाए न पाई, बिरता जन्म गवाया, जम मगधुग पावे चोटा खावे, अंत गया पछताया, बिन नावे को बेली नाही, पुत कुटम सुध पाई, नानक माया मोह पसारा, आगे साथ ना जाई, हाँ पूछो अपना सतगुरु दाता, किन वेद दुत्तर तरिये राम, सतगुर पाए चलो, जीवत्या एव मरिये राम, जीवत्या मरिये पौजल तरिये, गुरमुख नाम सुमावे, पूरा पुरख पाया वडभागी, सच नाम लेवलावे, मत प्रगाध पई मन मानिया, राम नाम वड्याई, नानक प्रपाया शब्द मिलाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सूही महला चौथा, कार पंजवा, एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद, पुर संत जनों प्यारा मैं मिलया, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे, हाओ मातन देवा सतगुरे, मैं मिले प्रगुणता से, तन तन गुरु वड पुरख है, मैं दसे घर साबासे, वडभागी घर पाया, जन नानक नाम वेगासे, गुर सज्जन प्यारा मैं मिलया, हर मार्ग पंथ दसाह, कर आवो चरीव सुनया, मिल सतगुरु प्रभ नाह, हाँ तुझ बाजो खरी उड़ीनिया, जो जरबिन मी मराह, वडभागी घर त्याया, जन नानक नाम समाह, मन दय दिस चल चल परमया, मनमुख परम भुलाया, नित आसा मन चितवै, मन तृष्णा पुख गवाया, अणता तान तर दबया, फिर बिख पालन गया, जन नानक नाम सलाहे तू, बिन आवे पज पज मोया, गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारया, मेरे हृदय शुद्ध बुद्ध विसर गई, मन आसा चिंत वसारया, मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुर देखत मन साधारया, वडभागी प्रव्याय मेल, जन नानक खिन खिन वारया, सूही शंत महला चौथा, मारे सोवे जन हमे बिकया, जिन हर प्रा मिलन ना दितिया, दे कंचन वे वनिया, इन हमे मार विगुतिया, मो माया वे सब कालखा, ए मनमुख मूड़ सुजुतिया, जन नानक गुरमुख उबरे, गुर सबदी हो मैं छुटिया, बस आने होवे जान, इस मन को मन बस ज्यो नित पौंदया, दुख रहन वे विखाणिया, नित आसा आस करेंदया, गुर पाया वे संत जनो, मन आज पूरी घर चौंदया, जन नानक प्रद्यो मती, छड़ आसा नित सुख सौंदया, सातन आसा चित करे राम राजया, हर प्रभ सेजड़ गे आई, मेरा ठाकुर अगम दयाल है राम राजया, कार कृपा लियो मिलाई, मेरे मन तन लोचा गुरमुख राम राजया, हर श्रद्धा सेज विछाई, जन नानक हर प्रभ पानिया राम राजया, मिलया सहज सुपाई, इकत सेज हर प्रभु राम राजया, गुरदसे घर मेले, मैं मन तन प्रेम वैराग है राम राजया, गुर मिले कृपा करे, हाँ गुर मिट्टो कोल कुमाया राम राजया, जियो सतगुर आगे दे, गुर तुठा जियो राम राजया, जन नानक हर मेले, राग सूही शंत महला पंजवा, कार पहला एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सुन बावरे, तू काए देख पुलाना, सुन बावरे न्यो कूड़ा लायो, कुसंब रंगाना, कूड़ी देख फुल्लो, अड लहे ना मुल्लो, गोविंद नाम मजीठा,
ਪੀ ਵੇ ਲਾਲਾ ਅਤ ਗੁਲਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਗੁਰ ਮੀਠਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਏ ਮਗਨ ਥੀ ਰਹਿਆ ਝੂਠ ਸੰਗ ਲਵਟਾਨਾ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਣ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਰਾਖ ਲਾਜ ਭਗਤਾਨਾ ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਸੇਵ ਠਾਕੁਰ ਨਾਥ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਜੋ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਿਚਲ ਹਬ ਵੈਸੀ ਸੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਈਏ ਭਾਗੀ ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਗਏ ਰਹੀ ਹੈ ਇਉ ਮਨ ਦੀਜੇ ਸੰਕਣ ਕੀਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਜ ਬਹੁ ਮਾਣਾ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਨ।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा। सदा सदा प्रभु को बलिहार नानक सतगुरु बाणा। ऐसा गुरवड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम। जन्म जन्म के किलबिख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम। हर धूड़ी नाइये प्रभु ते आई है बाहुड़ जोन ना आई है। गुर चरणी लागे प्रम पौ पागे मन चिंदिया फल पाई है। हार गुण नित गाए नाम त्याए फिर सोग नही संतापे। नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस परतापे। हर हरे हर गुण निधे

गुण गोपाल गाओ नित सखी हो, सगल मनोरथ पाए राम। सबल जन्म होआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम। जप एक प्रभु अनेक रव्या, सर्व मंडल छाया। ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया, सा ब्रह्म दृष्टि आया। जल थल महियल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए। देख दर्शन नानक बिसे, आप लए मिलाए। सूही महला पंजवा, आप चल नगर गोविंद गुरु का। नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप वसाया राम। करते आप वसाया सर्व सुख पाया, उत पाई सिख बेगासे। गुण गावे पूर्ण परमेश्वर, कार्य आया रस। प्रभ आप स्वामी आपे रखा, आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन इउ थान सुहाया। कर मंदर हटनाले सोहे, जिस च नाम निवासी राम। संत भगत हर नाम अराध, कटिए जमकी फासी राम। काटी जम फासी प्रभ अवनासी, हर हर नाम तिहाए। सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माणे रलिया, दुख दर्द प्रम नासी। शब्द सुहारे सदगुर पूरे, नानक सदबल जासी। दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम।

पौड़ी सच्चा अमर चलायून कर सतपुरमान सदा निचल रव रहा सो पुरख सुजान गुरप्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पा चढ़िए सहोर बार तोती तूमड़ी

आवे, गुर के शब्द सलाई है, हर नाम समावे, सदगुर सेवा सफल है, सेवे फल पावे। श्लोक महला दूजा, केस ही कोई कोए, मन निमाणी एक तू, क्यों ना मरीजे रोए। जा लग चेतन आव ही महला दूजा, जा सुगता सौरावेओ, दुख पी समालेओए। नानक कैसे आणिए, क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी। हों क्या सारा ही किरम जंत, वड्डी तेरी वड्याई। तू अगम दयाल अगम है, आप लय मिलाई। मैं तुझ बिन बेली को नहीं, तू अंत सुखाई। जो तेरी शरणागति तिन लय छिड़ाई, नानक वे प्रभाव है, तेस तिल ना तमाई। राग सूही बाणी श्री कबीर जियो, तथा सबना भगतां की। कबीर के एक ओंकार, सदगुर प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना। राम को नाम न कबहू लीना, राम ना जप हो कमर मत लागे। मर जैबे कहो क्या करो अपागे रखाओ, दोसु करके कुटुंब जीवाया। मरती बार एक सर दुख पाया।

एक कोट पंच गिदार पंचे मांगे हाला, जिमी नाई मैं किसकी बोई ऐसा देन दुखाला। हर के लोग मोको नीत डसे पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारे, तिनखो लिया उबारी रखाओ। नौ डाढ़ी दस मुंसब तावे, रैयत बसन ना देही, डोरी पूरी मापे नाही बहु बिस्टाला लेही। बहत्तर कार एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई। तरमराए का दफ्तर सोदया, बाकी रिजमना काई। संता कहो मत कोई निंद हो, संत राम गए एको। कौ कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। सह की सार सुहा गण जाने, तज अवमान सुगर लिया मन। तान मन दे न अंतर राखे, अवरा देख न सुने अपाखे। सोकत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। अरहाव दुखी दुहागन दोए पख हीनी, जिन नहा निरंतर भगत न कीनी। पुरसलाद का पंत दुखेला, संग न साथी गमन अकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कहे रविदास शरण प्रभु तेरी, ज्यों जन हो त्यों करगत मेरी। सूही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। संग चलत है हम पी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग एना, तय जीवन जग सच कर जाना। अरहाओ जिन जियो दिया सूरज अम्बरावे, सौकड़ पीतर हाड़ चलावे। कार बंदगी छाड़ मैं मेरा, हिरदे नाम सुमार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दैद अंधेहारा। कहे रविदास निदान दीवाने, चेत सुनाही दुनिया फन खाने। सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन न होई। यो तन ऐसा जैसे काश की टाटी, जल गयो काश रल गयो माटी। रखाओ भाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा। घर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कहे रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। राग सूही बाणी शेख फरीद जी की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। ताप ताप लोहे लोहे हाथ मरोरो, बाबल होई सो सो लोरो। तैसे मन में की आरोस, मुझ अवगुन सैना ही दोष। तै साहेब की मैं सार न जानी, जो बन खोए पाछे पछतानी। रखाओ काली कोयल

तू दयाल दया पद दाता, क्या ए जंत विचारे मुक्त बंसर तुझते होए, ऐसा आग वखाने गुरमुख होवे सो मुक्त कहिए, मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त, जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले, तेन की गहन गद कही ना जाई, सच्चे आप सवारे परम पुलाने से मनमुख कही है, ना उरवार न पारे, जिसनु नदर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले हर जन माया माय निस्तारे, नानक पाग वेज मस्तक काले मार बिदारे, बिलावल मोहल्लाती ज अतुल क्यों तोलिया जाए, दूजा होए ता सोजी पाए, तेते दूजा नाही कोए, तेदी कीमत किकू होए, गुर प्रसाद वसे मन आए, ता को जाने दुबदा जाए रहाओ, आप सराप तसवट्टी लाए, आपे परखे आप

पाई, अचिंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते सोभा पाई, जगदीशे वो में अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को संसार वेख है, बौड़ ना मरे ना जम पिख, करही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अन दिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय दिखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक त्रिशन बुझी मन तन सुख पाया।

बात होवै नहीं। अपना पला सब कोई बांछ, सो करे जे मेरे चितना चितैनी। मन की मत त्यागो हरजन, एहा पात कठैनी। आन दिन हर हर नाम त्यावो, गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जनतैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो पावे ते वे बोलैनी।

के छंदे जप मन हर हर नाम गोविंदे वड़भागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रघाओ साकत मूड़ माया के बधक विच माया फिरे फिरंदे तृष्णा जल तिरत के बांधे जो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे से उधरे वड़भागी सेव करंदे।

13 बोलो पैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भरपुर रहया जल थले राम नाम नित गाइए घर दुख बसारनो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसारन हारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा वित आसा हुई निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे ते स्यो मोह क्यों मिलिए प्रप अवनासी तोहे कर कृपा मुई मार्ग पाभो साध संगत के अंचल।

लाभ क्यों तरिए बिखिया संसार, तद गुरबोहित पावे पार रहाओ। पामन चुल्हारे माया दे, हर की भगत सदा थिर से, हरख सोगत रह निरारा, सेरी ऊपर आद गुरु रखवारा, पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा।

आप ही पुजारी, आप ही देवा, आपे जोग, आप ही जूता, नाग के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आप उपावन, आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही चरना, अरगाओ आप ही मष्ट, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आप पे अवगत आप संगरचना, पहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल मोहल्ला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुसो करत जन्म।

जो जो निंद करे इन ग्रहण की इस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई जा को शब्द अखंड अपार।

तुम प्यारे हम परादीस फूलते तुम बख्शन हारे रघाओ हम अवगुण करे असंख नीत तुम निर्गुण दाता रे दासी संगत प्रभु त्याग ए कर्म हमारे तुम देव हो सब दया तार हम अकिरत कन्हारे लाग परे तेरे दान स्यों नए चिदक समारे तोय ते भार किश नहीं पव काटन हारे कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुग्ध उधारे बिलावल मोहल्ला पंजवा दोष ना काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए कई एकाए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगन हमा रहाओ ज्यों तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा नी तरिया तर तेरिया एक नाम अधारा जो

अवसर दुलभाया, अंतर्यामी आप प्रभु सब करे कराया, पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया, मद कूलो मान उख जान माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रप है राया, बिलावल मोहल्ला पंजवा माटी तेजन साजया, कर दुर्लभ देखे अनक शिदर मन में टके, निर्मल दृष्टि हे क्यों बिस्तरे प्रा मने ते, जिसके गुण एह प्राप तज रचे जे आन स्यों, सो रलिगे खे हे रघाओ, सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेहे, जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी एह, कर सेवा तस पार ब्रह्म गुरते मत लेहे, ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरनेहे, दास दास को दासरा नानक कर लेहे, बिलावल मोहल्ला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर सुमरथ प्रभ पूर्ण गुणतास, जनका नाम आधार है प्रसरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रखाओ, आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे, दीन दयाल कृपा निधे सास सास संहारे, करणहार जो कर रहा साई वड्याई, गुर पूरे उपदेश आ सुख खसम रजाई, चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुकुम पछाता, न बिरसे न छोड़ जाए,

योग रगाव औगद हर का नाम है जित रोग ना व्यापै साध संग मन तन हित फिर दुख ना जापै हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उतरे शुद्ध होए साधु सरनाई सोनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल महला पंजवां पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिसे फेटिया ताके सुख परवेश।

भगत आराध्य एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार, शरण परे प्रतेरिया प्रभु की वड्याई, नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवां, सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पैरास, करतारपुर करता वसै संतन के पास रखाओ, बिघन न को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास, तोट न आवे कदे मूल पूर्ण पंडार, चरण कवन मन तन बसे प्रपगम अपार, बस्त कमावत सब सुखी इस ऊन ना दीसे, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीश, जय जयकार सबे करे सजथान सोह, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवां, हर हर हर आराधिये होई गई आरोग, रामचंद की लिस्ट का जिन मारिया रोग, रखाव गुरपूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत कैवारणे मिलिया संयोग, जे सिमरत सुख पाईए बिन से बियोग, नानक प्रसरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवां, दो पदे कर पंजवां, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, अवर उपास सत्या।

ओनास चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रहाओ मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास बिलावल मोहल्ला पंजवा सर

रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बसयन अपनी कल तारी मन बांझत फल दितेन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन श्रवणी ए ना सुनाए साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाव सेवत सेव सेव साध सेव सदा करो किरताए अपय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अघ अघ गुण राती।

मुकर पावे एकत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज भ्याजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होमन कौरा अनहोमन मीठा दिखिया मैं लपटाए जरे। अंध कूप मैं परे हो प्राणी परम गुबार मुह बंद परे। कहो नानक प्रभुत दयारा गुर पीटै काढे वहां फरे। बिलावल महला पंजवा मन तरसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे।

बनायो आप अपने सेवक की आपे रख ब्रह्म मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत्र।

मूला नस्यो प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरहन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवां हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रवो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रघाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान सनंतर सर्व नरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

दूत धुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे घर की जया। बिलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखया राता स्वान जैसे। औद विहावत अधक मुहावत, पाप कुमावत बुढे ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संग तरमन जैसे। केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बलावल महला पंजवा, दो पदे हर नामा। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, आपे मेल लय। जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए रहाओ। तज अब महान अरचिंत बैरानी, साधे शरण पय। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम, तांते रोग खय। महामुद अजान अज्ञानी, रखे तार दए। कहो नानक गुरपुरा फेट्यो, आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवा, जीवो नाम सुनी। जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रघाओ। पीर गई बंदी मन तीरा, मोयो अंध तुनी। उबजो चाओ मिलन प्रापरीतम, रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे, तिमरे अनक मुनि। अंध ले टेक नेर थन थन पायो, प्रभ नानक अनक गुनी। राग बिलावल महला पंजवा, कर तेरवा पड़ताल।

आनंद रूप त्याभो नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायोरी मोहन रूप दिखावे आमोय नींद सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज समानी।

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

राम लिव लाए, राम राम जप निर्मल भये, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मरण निवार, उचित राम भय पार उतार, सबते ऊंचे राम पर।

लूट लेहे सागत पद खोवे साध जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवा जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोह काम

राम रतन पसे मन आए, सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निट कर जान। पाए भगत प्रभु कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहूं सच वापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गोंड अष्टपदियां, महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सबल मूर्त

जैसे गाय का बाछा छूटला, थान चोखता माखन कूटला, नाम दियो नारायण पाया, पुर पीड़त अलख लखाया। जैसे बिखे हिद परनारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी, जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नामा।

मुकंद जो जुगतार उपजो ज्ञान हुआ परगास कर कृपा लीने कीटदास कौरवदास तप्त सना चूकी जब मुकंद सेवा ताहू की गोंड

बूंद में सागर कवन बुझे बिद जाने, ओत खुद चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन में रहन रहन में दिनियर, उसन सीध बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुर बिन समझ न होई। पुरख में नार नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तनके सद बलिहारी, जिन एक शब्द ले बिलाई। राम कली मोहला पहला, जहां हर प्रभु कृपा तारी, ता हों मैं विच हुमारी, तो सेवक राम प्यारी, जो गुर शब्दी बिचारी, तो हर दिन हर प्रभु पावे, आहिर से भगत करे दिन राती, लाज छोड़ हर के गुण गावे रघाओ। तुन वाजे अनगत कोरा, मन माने हर समोरा, और पूरे सच समाया, और आद पुरख हर पाया, अब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारग पाणी, ते तीर्थ वर्त तब सारे, गुर मिलिया घर निस्तारे, ते आप गया पो पागा, और चरणी सेवक लागा, और सदगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया। राम कली मोहला पहला, छादन भोजन मांगत भागे, खुदिया दुष्ट जलय दुख आगे, गुरमत नहीं लीनी दुरमत पद खोई, गुरमत भगत पावे जन कोई, जोगी जुगत सहज कर वस, एक दृढ़ एको कर देखिया, भीखिया पाए सब तृप्ता सह रखाओ। पंच बैल गडिया दे तारी, राम कला निभगे पलसारी, तर तूटी गाडो सिर पार, लकरी बिखरजरी मंज पार, गुरका शब्द विचार जोगी, दुख सुख समकरणा सोग बेयोगी, उक्त नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंध जपे निरंकारी, सहज गोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन में मुंद्रा हर गुर सरणा, नानक राम भगत जन तरणा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। राम कली महला तीजा कर पहला, सजुग सच कहे सब कोई, तर कर भगत गुरमुख होई, सजुग धर्म पैर है चार, गुरमुख बूझे को विचार, जो चारे नाम वडियाई होई, जे नाम लागे तो मुक्त होवे, गुरबिन नाम न पावे कोई रखाओ। त्रित एक करकी नी दूर, पाखण वर्त्या हर जान न दूर, गुरमुख बूझे सोजी होई, अंतर नाम से सुख होई, द्वापर दूजे दुबदा होए, परम पुलाने जाने दोए, द्वापर धर्म दोए पैर रखाए, गुरमुख होवे ता नाम दृढ़ाए, कलयुग धर्म कला एक रखाए, एक पैर चले माया मोह बधाए, माया मोह अत गुबार, था गुर भेटे नाम उधार, था जुग में साचा एक सोई, था मैं सच दूजा नहीं कोई, साची कीर्त सच सुख होई, गुरमुख नाम खाने कोई, था जुग में ना उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, हर नाम त्याए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम।

तुम मैं मान कलाला, तुम देव उत्ते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मद बासरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा, राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सासी गारी रखाओ, आखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पनम चूला करत अकेला, जल ते उपत हुआ, पंच तत कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दु जरे चिरागा, चौ कुंड पीतर राखे, दस पातो पंच संगीता, एक पीतर साते, पिन पिन हुए पाद दिखावे, सभो निरारी पाखे, तार कर नृत होवे दिन राती, खड़कड़ वाजे तूरा, एक नचावे, एक पवावे, एक आए जाए हुए तूरा, कहो नानक

गर्भ है परया, जप नाथ दिन रहनाई, तेरी खिंता दो दिहाई, रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी, मांगे टूका तृप्त न पावे, नाद छोड़ जाचे लाज न आवे, क्याल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी वाजे नित उदासेरा, गुर गुर कीते बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसन हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंता नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपया नाथ दिन रहनाई, हुन पाया गुर गोसाई, रहाओ दूजा राम कली महला पनवा, करन करा मनसोई आना दिसे कोई, ठाकुर मेरा सूड सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रे घर समीठा, गुरमुख किने विरले डीठा, रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम, पीवत अमर पय ने काम, तन मन शीतल अग्नि निवारी, अंध रूप प्रगटे संसारी, क्या देवो जा सब कुछ तेरा, सब बलिहार जाओ लख बेरा, तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया, खोल किवारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया, कहो नानक सब पड़दा टूटा, हौ तेरा तू मैं मन मूठा, राम करी महला पंजवा, सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, जिस गुर कहो सद बलिहारी, ताज मारे पूरे सदगुर, बाजे अनघ तूरे सदगुर, रहाओ महिमा जाकी गैर गंभीर, होए निहार देज तीर, जाके बंधन काटे राय, सो नर भौर न जो नी पाए, जाके अंतर पलट्यो आप, ताको नाही दुख संताप, ला रतन से पाले परया, सगल कुटम ओ जन ले तरया, नाह

दहेदिस विश्राम तिलक चरावे पाई पाए लोक पचारा अंध कमाए खड कर्मा आर आसन धोती भागट ग्रे पड़े नित पोथी माला फेरे मंगे बेभूत ए बिद कोई न तरे उमीत तो पंडित गुर शब्द कमाए त्रैगुण की ओस उत्तरी माए चतुर्वेद पूर्ण हरनाए नानक तिसकी सरणी पाए राम कली महला पंजवां।

जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओ आके संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा ताकी केतक वर्ण बल बल जयगे ताके चरण तिन्ही किया जब तव ध्यान अनक प्रकार किया तिन दान भगत सोई

राज रंग रूप सब कूर ना बिना हुए जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख मैं दे बिरधानी सागत ए भी करत बिहानी हर का नाम अमृत कलमाहे

उठ चलना, राच रहो तू संग सुपना रहाओ, बाल व्यवस्था बारक अंध, पर जोबन लागा दुर्गंध, त्रिति व्यवस्था संचे माए, बिरध पया छोड़ चलो पछताए, किरण काल पाई दुर्लभ देहे, नाम बिहूनी होई खेहे, पशु प्रेत मुग्ध ते बुरी, इसे ना बूझे जेन ए श्री, सुन कर तार गोविंद गोपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छुड़ावो छुटके बंद, बक्स मिलावो

मन मेहमानी महापुरख का संग पया रहाओ। सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई पला, जय राखे सोई मुक्त स्थान जो जपाए सोई नाम। 68 तीर्थ जय साध भगत धर है, तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है। सर्व आनंद जब दर्शन पाईए, राम गुणा नित नित घर गाएगे। आपे करकड़ रहा बेआप, दयाल पुरख प्रगट प्रताप। कपट खुराने भ्रम नाठे दूरे, नानक गौगुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवां, कोट जापता विश्राम। रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान, अनक रूप रंग भोग रस। गुरमुख नाम निमख हृदय वसे, हर के नाम की वड्याई। कीमत कहन न जाई रखाव, तूर वीर तीर जमद पूरा।

पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा हो निर्मल जियो सोधत सोधत सोध बिचारा बिन घर भगत नहीं छुटकारा सोहर भजन साध कै संग मन तन रापे हर कै रंग तोड़ सियाण पोच तराई मन बिर हर नावे जाए ना काई दया धारी गोविंद गुसाई हर हर नानक टेक टकाई राम करी महला पंजवां संत कै संग राम रंकेल आगे जमस्यो होए ना मेल अंग बुद्ध का पया विनाश दुर्मत होई सगली नास राम नाम।

सदा आनंद न हो भी सोग, कहु न व्यापे हो मैं रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा, परम गद पावे हर सिमर प्राणी रखाओ। गण मन देखो सगल विचार, ना बिना को सके ना तार, सगल उपावन चल है संग, पवजल तरिगे प्रभु के रंग। देही तोय न उतरै मैल, होमे व्यापे दुबदा फैल, हर हर औखद जो जन खाए, ताका रोग सगल मिट जाए।

हर शरण मन तन हर ओई तिहाया, आनंद हर रूप दिखाया। तिसही की ओर सदीव, जाके किन्ने गए जीव। सिमरत हर करत निधान, रखन हार निदान। सर्व की रेण होवी जे, आप मिटाए मलीजे।

सागर तरियो बाशर खोज, खेद न पायो नए पुनरोज। सिंध समायो कट के माहे, करण हार कहो किस अज जनाहे। जो छूटो तो जाए पयाल, जो कढ़ो तो नजर निहाल। पाप पुन हमारे बस नाहे, रसक रसक नानक गुण गाहे। राम कली मोहल्ला पंजवा, ना तन तेरा ना मन तोहे। माया मोहे बया पिया तोहे, उदम करे गाडर जो शेल। अचिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरनाए मना। राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे साज तना रहाओ। ऊने काज न होत पूरे, काम क्रोध मद सदगी चूरे। करे विकार जीरे के ताई, गाफल संगनत हुआ जाई। तरत तो अनक छल जाने, कौडी कौडी को खाग सिर छाने। जिन दिया तसे न चेते मूल, मिथ्या लोभ न उतरे सूल। पार ब्रह्म जब पए दयाल, जो मन हुआ सादरवाल। हस्त कमल लड़ली नू लाए, नानक साचे सास समाए। राम कली मोहल्ला पंजवा, राजा राम की शरणाए। निरपो पए गोविंद गुण गाव, साध संग दुख जाए रघाव। जाके राम बसे मन माही, तुझन दुत्र पेखत नाही। सगले कासवारे अपने, हर हर नाम रसनित जपने। जिसके मस्तक हाल गुर तरे, तो दास अंदेशा काहे करे। जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुर ऊपर कुर्बान। गुर परमेश्वर पेट निहाल, तो दर्शन पाए जिस होए दयाल। पार ब्रह्म जिक्र पा करे, साध संग सो पव जल तरे। अमृत पीवो साध प्यारे, मोह खूजल साते दरबारे। अंद करो ताज सगल विकार, नानक हर जप उतर हो पार। राम कली मोहल्ला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागे। माटी को जल दिस जागे, ऊपर चरण तले आकाश। कड़मे सिंध की ओ परगास, ऐसा समर्थ हर जीव आप। निमकन बिसरे जी भगतन कह, आठ पैर मनता को जाप रहाओ। प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनू साबन सूद। पय ते निरपो डरता फिरे, हुंदी कौ अणहुंदी हिरे। देही गुप्त बदेही दीसे, सगले साज कर जग दीसे। ठगन हार अन ठगदा ठगे, बिन वखर फेर फिर उठ लागे। संसभा बिन करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण। ब्रह्म विचार विचारे कोय, नानक ताकी परम गद होय। राम कली मोहल्ला पंजवा, जो तुझ पावे सो थिया। सदा सदा हर की शरणाई, प्रभु नाही आन बिया। रहाओ पुत कलतर लक्ष्मी दिसे, इन में किशु न संग लिया। बिखे ठकौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगूता, गर्भ जो में कृत पया। पूर्व कमाने छोड़े नाही, जम दूत ग्रास्यो महा भया। बोले झूठ कमावे अवरा, तिसना बूझे बहुत हया। असाध रोग उपजिया संदूखन, दे बिना सी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन ही साजे, आपे कीने संत जया। नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली मोहल्ला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई। जाका सिमरन तिरथा ना जाई रहाओ। दर्शन पेहत होए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल। चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्ज सवारे सगले तन के। जाके मस्तक राखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। पतत उदाहरण कृपा निधान, सदा सदा जयगे कुर्बान। निर्मल मत दे जिस दान, तजे विकार बिन से अपमान। एक तिहाई के साध के संग, पा बनासे नाम कै रंग। गुर परमेश्वर सगल निवास, कट कट रब रया गुणतास। दर्श दे तारो प्रव्यास, नित नानक चितवे सच अरदास।

तुर की सेवा राम रवीजे, नानक नाम मिले कृपा प्रभु कीजे। राम कली महला पहला, अंतर उत्खोज अवर न कोई, जो कहिए सो प्रते होई, जुगे जुगंतर साहिब सोई, उत्पत परलो अवर न कोई। ऐसा मेरा ठाकुर गैर गंभीर, जिन जपया तिन ही सो पाया, हर के नाम न लगे जम तीर रखाओ, नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, हर दर साचा नहीं रोल। एक बन में बैसे डुगर अस्थान, नाम सार पते अभमान, ना बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगे मान, हट अंकार करे नहीं पावे, पाड़ पड़े ले लोग सुनावे, तीर्थ परम सो व्याध न जावे, ना बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद कवे ना रखाई, मनवा डोले नरके पाई, जंपर बादो ले सजाई, बिनावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हट निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गह गुर सेवा, मन तन निर्मल अभमान अपेवा, कर्म मिले पावे सच नाओ, तुम शरणागत रहो सुपाओ, तुम ते उपजो भगति पाओ।

कह बपरे जीव तमुआ मनमारी ब्रह्मा बिशन महेश एक मूर्त आपे करता कारी ताया सो तरे पवसागर आत्म तत् विचारी गुर सेवा ते सदा सो पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता होमे तृष्णा मारी त्रै गुण मेटे चौथे वर्त एहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने हृदय एक मोरारी मनवा अस्थिर शब्द राता एहा करणी सारी वेद बादरा पाखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जो कुमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मारे औदु जो जुत विचारी माया मोह भवज लख अवधु सब तरह कुलतारी सब सूरज उचारे औदु बाणी भगत विचारी यो मन माया मोहया औदु निरसे शब्द विचारी आपे बगसे मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी राम कली मोहला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सरमे दिया मुंदरा कन्नी पाए जोगी खिंसा कर तू दया आमन जान विपूत लाए जोगी ता तीर पवन जिन लाया ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजे हर सिंह रहे लिवलाए रहाओ ससंतोख पद कर चोली जोगी अमृत ना पुगत पाई क्या कागर डंडा जोगी सिंगी सुरत बजाई मान दृढ़ कर आसन बैल

दावा अग्न रहे हर बूट, माद गर्भ संकट ते शूट, जाका नाम सिमरत को जाए, तैसे संत जना राखे घर राय, ऐसे राखन घर दयाल, जत का देखो तुम प्रतपाल रखाओ, जल पीजो तिखा मिटंत, तन बिसे ग्रे आवत कंत, लोभी का तन प्राण आधार, त्यों हर जन हर घर नाम प्यार, किसानी जो राखे रखवाला, मात पिता दया जो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, त्यों हर जन राखे कंठ लाए, जो अंधले पेगत होए आनंद, गूंगा भगत गावे बहुचंद, पिंगल पर्वत परते पार, हर के नाम सगल उधार, जो पावक संग सीत को नास, ऐसे प्राशित संत संग विनाश, जो साबन पापर उजल होत, नाम जपत ता परम पखोत, जो चक्री सूरज की आस, जो चात्रक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद कर्ण समाने, त्यो हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पहेता आए चीत, दया तारी तन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, तब थान देखे नैन अलोय, जिबन दूजा अवर न कोय, परम पै छूटे गुर प्रसाद, नानक पेख्यो सब विस्मात, राम कली महला पंजवा, जी जंत सब पेखिए, प्रसगल तुम्हारी तारना, यो मन हर के नाम पधार।

आठ पैर अपना प्रभ सिमरै, एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रोतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन प्रलगा मीठा पाना, सब इश पुन्नी आस पूरी मिले सदगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली मोहल्ला पंजवा शांत सलोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नान प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिये जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहे एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सफागे सर्व गुण जगदीसरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पय संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रदपाल जियो, प्रदपाल अचुत पुरख एको तिसे स्यो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तिसका तन जोबन तन माल जियो, सा सदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो। श्लोक सदन उतरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नांग पगड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ, शंत सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध पयावड पागी हो गृह प्रगटे प्रभ आए जियो, गृह लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमन रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए कंठ।

वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर निरपमसार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाय तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन ले मानक मोती समझे सूझे पड़ पड़ बूझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देखे साच संभाले बिन साचे जग काचा तदे धर्म तरे तरमापुर गुणकारी मन तीरा तदे तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पए मनूरा तन तरणी तर आप अजोनी तोर बोसज पूरा करते की मित करता जाने कहे जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिग खाया गोरस गीत बादनी पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुरस कहया अमृत लया मन तन सा सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एक को एक कहे सब कोई होमे गर्भ वे आपे अंतर बार एक पछाणे क्यों कर मैल संजापे प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो एक को सृत सबाई एकंकार अवर नहीं दूजा नानक एक सुमाई इस करते को क्यों गए राखो अफरे तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लाभ लोभ मोहताज विगूते इवता फिर पछताई एक सरेवेता गतमित पावे आमन जान रखाई एक अचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एक को पावर पवे ते लोए एक को बूझे सूझे पत होए ज्ञान जान ले समसर रहे गुरमुख एक विरला को लहे जिसनु दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊर्म तूर्म जोत उजाला तीन पण में गुर गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे ऊन बरसे निजर तारा उत्तम तब सवारन हारा इस एके का जाने पेओ आपे करता आपे देओ उगवे सूर असर संघारे ऊचो देख शब्द बिचारे ऊपर आद अंत लोए आपे करे कसे सुने सोए ओ विधाता मन तन दे ओ विधाता मान मुख सोए प्राप जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पद होए अराजन राम रवे हितकार रण में लूजे मनुआ मार रात दिन अंत रहे रंग राता तीन पौन जो चारे जाता जिन जाता सो तिस ही जेहा आत्म निर्मायल शीश देहा रे श्री राम हृदय एक पाए अंतर शब्द सात लिवलाए रोस न कीजे अमृत पीजे रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहन ते रहे न कोई इस पे करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरदेवे पतमती लाज मरंती मर गई भूगुट खोल चली साध दीवानी बाबरी सिरते संकट टली प्रेम बुलाई रली सियो मन में शब्द आनंद लारती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लहा नाम रतन जब सार लब लोभ बुरा अहंकार लाड़ी चाड़ी लाए तवार मान मुख अंधा मुग्ध गवार लाहे कारण आया जग होए मजूर गया ठगाए ठग लहा ना पूंजी वे साहो नानक सची पात सच्चा पात साहो आए विगूता जग जम पंथ आई ना मेटन को समरथ आस सहल नीच कर होए आस देख निवे जिस दोए आस होए ता मुक्त से आना भगत बिहु ना जग बोराना सब में वरते एको सोए जिसनु कृपा करे तिस प्रगट होए जुग जुग थाप सदा निर्वैर जन मरण नहीं तंदा तैर जो दिसे सो आपे आप उपाय आपे कड़थाप आप अगोचर तंदे लोई जोग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई नाम विहुणा मुक्त के होई।

भय चूर गे तनमय चीत गुवार तन विरली सच संचय निर्मल नाम प्यार तन गया ता जान देह जे राचे रंग एक मन दीजे सिर सो पिए पी करते की टेक तंदा तापत रह गए मनमय शब्द आनंद दुर्जन ते सजन पए टेटे गुर गोविंद बन बन फिरती टूणती बस्त ही कारबार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार ना ना करतना छूटिए विण गुण जम पुर जाहे ना तिस एहो ना ओ है अगुण फिर पछताहे ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस कर्म ध्यान विण नावे निरपो कहा क्या जाना अब महान था कर ही के अपड़ा हाथ नहीं ना पार ना साजन छे रंगले किस पे करी पुकार नानक प्रयो प्रयोजे करी मेले मेलनहार जिन छोड़ी सो मेल सी गुर के खेत अपार पापुरा पापी को प्यारा पावल दे पापे पासारा पर हर पाप पछाने आप ना ते सोग विजोग संताप नरक पड़न तो क्यों रहे क्यों बंचे जमकाल क्यों आमन जाना विसर टूट बुराखे काल मन जंजाली वेड़िया पी जंजाला माहे विड़ नावे क्यों छूटिए पापे पजे पचाहे फिर फाही फासे कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ पाथा चो जुगे नहीं बूझे सतगुर मिले ता आखी सूझे जो

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बहार जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बहार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो मैं मेड़।

कथियले सुन कहां करवासो ज्ञान की मुद्रा कमन कथियले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जलाइले क्यों निरभो कर जाइए सहे संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइये गुर के शब्द हमें बिख मारे ता निरकर हो गए वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे सुमाई एस

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गात मित सब दे पाई आदि कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जीया गुर बचनी अवगत समाइये तत् निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवै सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सदगुर परते परम पद पाईए साचे शब्द समाए लिया एक को सच एका जाने होमे दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रकाश थिया जीवित मरे ता सब कुछ सूझ है अंतर जाने सर्ब दया नानक ताको मिले वडाई आप जाने सर्ब जिया सच उपजे सच समावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवा गौण पया आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बगसलया एक आवेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरया तो बुझे जिस आप बुझाए गुर कै सब सो मुक्त पया नानक तारे तारण हारा होमे दूजा पर हरिया मनमुग फूले जम की कान पर कर जो है हाने हान मनमुख परम पवे बेबान वे मार्ग मूस मंत्र मसान शब्द ना चीने लवे कुबान नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावे गुरमुख बाणी अगड़ कढ़ावे गुरमुख निर्मल हर गुण गावे गुरमुख पवित्र परम पद पावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे नानक गुरमुख सा समावे गुरमुख परचे वेद विचारी गुरमुख परचे तरिये तारी गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचे अंतर विद जानी गुरमुख पाइये अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथे विचार गुरमुख निभगे सब परवार गुरमुख जपिये अंतर प्यार गुरमुख पाइये शब्द अचार शब्द भेद जाने जानाई नानक होमे जाल समाई गुरमुख धरती साचे साजी इसमें ओपत खपत सो बाजी गुर के शब्द रपे रंग लाए साजर तो पास्यों कर जाए साज शब्द बिन पत नहीं पावे नानक बिन नावे क्यों साच समावे गुरमुख अष्ट सिद्धि सा बुद्धि गुरमुख पवजल तरगे सच सुधि गुरमुख सार अवसर विद जाने गुरमुख परविरत निर्विरत पछाण गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते होमे जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते

सबकी सिर जापै, बिन नावे दुख तार संतापै, तत्तो तत् मिले मन मानै, दूजा जाय इगत कर आनै, बोले पवना गगन गरजै, नानक नेचल मिलन सहज, अंतर सुनंग भार सुनंग, तिर पमण सुनम सुनंग, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप ना पुनंग, काट काट सुन का जाने पेयो, आद पुरख निरंजन देयो, जो जान नाम निरंजन राता, नानक सोई पुरख विधाता, सुनो सुन कहे सब कोई, अनहत सुन कहां ते होई, अनहत सुन रते से कैसे, जिसते उपजे तिस ही जैसे, कोई जन्म ना मरे ना आवे जाहे, नानक गुरमुख मन समझाहे, नौ सर सुभर दसवें पूरे, ते अनहद सुन वजावे तूरे, साचे राचे देख हजूरे, कड़कड़ साच रहया पर पूरे, गुप्ती बाणी प्रकट होए, नानक परख लए सच सोए, सहज पाई मिली गए सुख होवे, गुरमुख जाग गए नींद न सोवे, सुन शब्द अपरंपर तारै, कहते मुक्त शब्द निस्तारै, गुर की दीखिया से सच राते, नानक आप गवाए मिलन नहीं प्राते, कबुद चवावे सोकत ठाए, क्यों तातना बूझे चोटा खाए, जामदर बादे कोए न राख, बिन शब्दे न ही पद साख, क्यों कर बूझे पावे पार, नानक मनमुख ना बुझे गवार, कबुद मिटे गुर शब्द विचार, सदगुर पेटे मुख द्वार, तत न चीने मनमुख जल जाए, दुरमत विछड़ चोटा खाए, माने हुक्म सभे गुण ज्ञान, नानक दरगह पावे मान, सहज वखर तन पल्ले।

सब तीर्थ गह ओ तपा कैसे परमगत लह गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा सो तपा ये ओ तप का ले सदगुर नु मिले शब्द समाले सदगुर की सेवा यो तप प्रवान नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी रात दिस उपायन संसार की वर्तन गुरमति कड़चानना आनेर बिनासन हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वण त्रेण सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण सब देखी सोजी पई सच्चे आप बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जिनके चित में परम ते दे दिते नानका ते हो जेगा तर्म आपए निरंजन परम पद ताका भूखा होए जिसका पूजन नानका विरला पाए कोए महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जे पढ़ कर पूजन करेन उदरे कारण अपने बैले पेह करेन अभ्यागत से ही नानका जी आत्म गौन करेन पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन पौड़ी अंबर तरत बिछोड़ेन वे सच्चा असराओ घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच सुनाओ सच्चा आप तगत सच्चा बै सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा रैनायर माय अनंत है पूड़ी आवे जाए भाणे चले अपने बहुती लय सजाए राय नायर में सब किस है कर्मी पल्ले पाए नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए महला तीजा है जे सतगुर ना सेवे हो विच होमे जन्म विनाश रसना हरसना चखे हो कमल न होयो परगास बिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिगवास जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यो विचे गिरे उदास जन नान करे कराया सबको क्यों पावे ते भर गुण तास पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंथ कीनी आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी सिमरत सास्त साजियन पाप पुन ग्रंत गणीनी जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी सब आपे आप वर्तदा आपे बगस मिलाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए जो से रते अपने तेन तन लोभ रत न होए पए पए तन खीन होए लोभ रत विच हो जाए ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत महल गवाए नानक तेजन सोने जो रते हारंग लाए महला तीजा राम कली रामन वसया ता बनया सीगार गुर के शब्द कमल बिगसया ता सौंपया भगत भंडार परम गया ता जा गया चूका अज्ञान अंधार तेसनु रूप अत अगला जिस घर नाल प्यार सदा रवे तेरे अपना तोबावंती नार मनमुख सीगार ना जाननी जसन जन्म सवहार
फिर घर भक्ति सीगार कर नित जम्मे हुए खुवार सह सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो बच गए संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सतगुर सेवे साथ न आवई दूजी ना ही जाए जे वो तेरा लोचिए विण कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तिन जम्मन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिनी सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सुखा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब ताव है आप निचल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा घर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निकरवासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू खबो वरते सच नानक हुक्मे जो बुझे तो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच नानक हर का पाणा मन्ने तो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच्च महला तीजा मन मुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी उन अंतर लो विकार ओए अपने स्वाए आए भय गल्ला करे ओ ना मारे जम जिंदार अगे दरगे लेखे मंगे मार खुआर कीचे कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरे कोई कड्डो यो विचार सतगुर मिले त नाम दड़ाए सब केल कटन हार नाम जपे नाम आराध ते जन को करो सब नमस्कार मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी तुद जेवड़ दाता नाग किस आग सुनाई है गुर प्रसादी पाए जितो होम में जाइए रस का सादा बार सच्ची वडे आइए जिसनु बख्शे तिस दे आप लय मिलाइए तट अंतर अमृत रखे ओन गुरम किसे पे आई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा पाबाणियां कहानियां उत सुपुत करेन जे सतगुर पावे सो मन लैन सेई कर्म करेन जाए पुछो सिमरत सास्त प्यास सुख नारद बचन सब सृट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच समालेन नानकाए से प्रवाण पए ते सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंगला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने निर झूठो चूड़ बोलेन कूड़ कु सत कुमान दे पर निंदा सदा करेन ओए आ डुबे पर निंदगा सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखद जेती सिट सब कीती एक कूड़ कु सत लायन मनमुख विभूति गुरमुख सदा त्याई है अंदर घर प्रीति जिन को पोते पुन है तिन वात से पीती नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਹੇ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵਣ ਜਾਹੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਖੱਟੇ ਭਾਓ, ਭਾਵੇ ਆਵੋ ਪਾਵੇ ਜਾਓ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਏ, ਆਪੋ ਆਪੇ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕੈ ਭਏ ਨਿਆਏ, ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ ਸੁਣਾਏ। ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕੰਨ ਰੇ ਸੁਮਾਹੇ, ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇ ਚਾੜੀ ਖਾਹੇ। ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਏ। ਜੋਗੀ ਗਿਰਹੀ ਜਟਾ ਬਿਭੂਤ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇ ਪੂਤ। ਜੋਗ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁੱਤ ਗਵਾਈ, ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਲਕਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਪੇ ਆਖਣੇ ਆਪੇ ਜਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ। ਸੂਜ ਨੇਉ ਪੜਗਲ ਪਾਵੇ, ਸੂਦ ਪਾਏ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ। ਨਾਤਾ ਧੋਤਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਵਿਣ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਉਹ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਰਾਉਦ ਸਾਏ ਉਥੇ ਕੋ ਜਾਏ, ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਪਿਸਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਘਰ ਜੁਗਤ ਦਸਾਈ, ਤਿਤ ਕਾਰਨ ਕਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ। ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਟਾਊ, ਕੀਰੀ ਆਈ ਟਿਲ ਨਾ ਕਾਊ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣੇ, ਹੋਰ ਫੱਕੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ। ਸਭਨਾ ਕਾਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ। ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਆਖੀਏ, ਕਾਇਆ ਕੋੜ ਗੜ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਜਵੇਰੀ। ਗੁਰਮੁਖਰ ਨਾਮ ਪੜ, ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਅਤ ਸੋਹਣਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜ, ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਖੁਆਇਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਿਤ ਕੜ। ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਸਦੁਗੀਆ ਨਾ ਸਸੁਗੀਆ, ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਸਤ ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਈ ਕੇਸੀ। ਨਾ ਸਤ ਪੜਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਸਤ ਰੁੱਖੀ ਬਿਰਖੀ ਪੱਥਰ। ਆਪ ਸ਼ਾਵੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ, ਨਾ ਸਹਸਤੀ ਬੱਧੇ ਸੰਗਲ। ਨਾ ਸਤ ਗਾਈ ਕਾਉ ਚਰੇ, ਜਿਸ ਹਸਿੱਧ ਦੇਵੇ ਜੇ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤ ਆਏ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ। ਜਿਸ ਕੜ ਪੀਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ, ਸਭ ਕੜ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ। ਜਿਸੇ ਖੁਆਈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਕਹੇ, ਜਿਸੇ ਦਿਖਾਲਾ ਵਾਟੜੀ ਤਿਸੇ ਭੁਲਾਵੇ ਕੌਣ। ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ ਸਿਰ, ਤਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੌਣ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗਰੋ ਕਰੇ, ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ। ਬੋਲੇ ਈਸਰ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਜੋ ਤੂਪੇ ਆਪ, ਪੀਖਿਆ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਸੰਤਾਪ। ਔ ਹੱਠ ਪਟਣ ਮੈਂ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਸੇ ਪੁਰ ਚੜੇ। ਬੋਲੇ ਗੋਰਖ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਜੇ ਪਾਲੇ ਉਦਾਸ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਸ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਡ, ਤਿਸ ਉਦਾਸੀ ਕਾ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਧ। ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਪਾਖੰਡੀ ਜੇ ਕਾਇਆ ਪਖਾਲੇ, ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰ ਜਾਲੇ। ਉਪਨੇ ਬਿੰਦ ਨਾ ਦੇਈ ਝਰਣਾ, ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨਾ ਮਰਣਾ। ਬੋਲੇ ਚਿਰਪਟ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਪੈਰਾਗੀ ਜੇ ਉਲਟੇ ਬ੍ਰਹਮ,
گگن منڈل میں روپے تھم آئے نس انتر رہے تیان تے بیراگی ست سمان بولے پرتر ست سروپ پرم تت میں ریکھنا روپ مغلہ پہلا کیوں مرے مندا کیوں جیوے جوت کان پڑائے کیا کھاجے پوت آست ناست ایکو ناو تون سو اکھر جت رہے ہی آو توپ شام جے سم کر سہے

समाए काहे भिख्या मंगण जाए पौड़ी हर मंदिर सोई आखिए जिथों हर जाता मान दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता बार मूल ना खोजिए कर माए विधाता मनमुख हर मंदिर की सार ना जाननी तिनी जन्म गवाता सब में एक वर्तदा गुरसवधि पाया जाई वाहो वाहो सच्चे पात सहा तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लक्षण है क्या मूर्ख का करना मूर्ख हो जे मुग्ध है अहंकारे मरना एत कमाने सदा दुख दुख ही मैं रहना अत प्यारा पवे खूह क्यों संजम करना गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुबदे पी तरना नानक जोत पावे सो करे जो दे सो सहना महला पहला नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही दलबा पोसन आकिया बाकी जिना रही अजराइल फरेश्ता होसी आए तई आमन जान न सुजई पीड़ी गली पई ऊड़न कुट्टे नानका ओड़क सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहे सब आपे हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे गुर प्रसाद दी साराई है हर पगती रापे सब मन पन हरिया होया अहंकार गवापे सब किस हर का खेल है गुरमुख से बुझाई वाहो वाहो सच्चे पात सह तू सच्ची नाई सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंदर रो आया परसराम रोवे कर आया अजाय सुरोवे पीख्या खाए ऐसी दर गए मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमण विछड़ गया रोवे देसर लंक गवाए जे सीता अंधी डौरू वाए रोवे पांडव पय मजूर जिनके स्वामी रहत हदूर रोवे जनमेजा खोए गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसायक पीर अंतकाल मत लागे पीड़ रोवे राजे कन्न पड़ाए कर कर मांगे पीख्या जाए रोवे किरपन संचे तन जाए पंडित रोवे ज्ञान गवाए बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार मन्ने नाओ तो ही जन जाए औरी कर्मना लेखे लाए महला दूजा जब ताप सब कुछ मन्ने अवरकारा सा बाद नानक मन्या मन्निए बुझगे गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुरमेल करते लिख पाया थमे गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चर गुण माये सुमाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किस आपे आप है आपे दे वड्याई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना परखण जाए रत्ना सार ना जानई आवे आप लखाए महला दूजा रत्ना केरी गुसली रत्नी खोली आए वखर तय बन जा रहा दोहा रही सुमाए जिन गुण पल्ले नानका मानक बन जैसे रत्ना सार ना जानई अंधे वत्ते लोए पौड़ी नौ दरवाजे कया कोट है जिसमें गुप्त रखी जय वज्रक पाठ ना खुलनी पुर शब्द खोली जय अनखद वाजे तुन वज दे पुर शब्द सुनी जय तेदकड़ अंतर चानना कर भगत मिली जय सब में एक वर्तदा
ਜਿਹਨੇ ਆਪੇ ਰਤਨ ਰਚਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੰਧੇ ਕਹਿ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਹੋ ਕਿਉ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ ਕਰੇ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਏ, ਜੇਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ, ਜੇ ਸੋ ਆਖੇ ਕੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਆਪੇ ਵਰਤੋ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਲਏ। ਤੱਕੇ ਨਾ ਵਸਤ ਪਛਾਣ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਹੋ ਕਿਉਂ ਅੰਧਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਹੁਕਮ ਅੰਧਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਈ। ਅੰਧਾ ਕਹੀਏ ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜ ਕੋਟ ਹੈ ਸਬਦ ਸੰਤਰ ਦੇਸਾ, ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਨ ਹਮੇ ਪਰਵੇਸਾ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਟ ਸਾਜੀਆਂ ਆ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਸਾ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸਜ ਪ੍ਰਗਟੀ ਏਸਾ, ਸਬਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਹਮਣ ਰਾਤ ਆ

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तेड़ा मन साधारण, दुर्जन से ती निहो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मल कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जितहो लाई तितहो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलियां, एक देवो रात मुरारी, महला पंजवां, ताहि मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराधमान, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया,

गाओ, मन तन हृदय सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

तिस दर्द निवारणो, जितो मुठा चित तिस कदे ना हारणो, जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर प्रतारणो, जिसनु लाए सच तिस सच संभालणो, जिस आया हथ निधान तुरया पालणो, जिसनु इको रंग भगत सो जानणो।

लहने तरयोन छत्र सिर असमान के आड़ा शिक्योन जोत सुमानी जोत मावे आप आपे से ती मिक्योन सिखा पुत्रा कोख कह तब उम्मत वेखो जिक्योन जासु दोस्ता लहना टिक्योन फेर वसाया फेर आन तद गुरखा डूर जब तब संजम नाल तुद होर मुच गुरूर लब बना गए मानस जो पानी बूर वरे दर गए गुरु की कुदरती नूर जित सुहात न लभई तू ओ ठरूर नौ निद नाम निधान है

तन सुतेरा थान है सच तेरा पैसकारिया नानक तू लेना तू है गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा ता मन साधारिया।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

निंदा पर अपवाद ना छूटे, आवागमन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे। जे कर कथा होत हर संतन, एक निमखन की नो मैं फेरा, लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मस्तर, ए संपे मो माही, दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनं तरनाही। दीन दयाल के पाल दमुद्र, भगत बछल पैहारी, कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी। जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाए बैकुंठ नहीं संसार, निरपो के कर बजावे तूर, अनगत बजे सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रखाओ। जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे।

हस्त विनोद विचार करती है। ईसोगा ग्रह राखी अले मंदिर एक द्वार जा जाके गऊ चरावन छाड़ी अले पांच कोस पर गऊ चरावत ईसो बछरा राखी अले।

स्वामी तुम दुष्ट तारे हरण के, नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो जन।

रखाओ। आज्ञा मान जान सुख पाय, तुन सुन नाम तुहारो जीओ। ईगा ऊगा हर तुम ही यो गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ए बाता, ताब कुशल खेम सब तीयो। साध संग नानक परगासियो।

सदगुर ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई, परसुआ गण उधारे। परस न परस फय कुबजा कहो, लय बैकुंठ सुधारे।

साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो सब तृष्णा पूख निवारे। पते पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंच पूत सब लगे देही गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गद पावो सत संगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निखारे, मेर सुमेर मोर बो नाचे, जब उनमें कान कन घारे। सागत को अमृत बो सिंचो, सब डाल फूल विस्कारे, ज्यो ज्यो निवे सागत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डे बिखकारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले परे पुकारे, संत संत मिले मन विसे, जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान खलक है, हलके सबे बिगारे, मेरे ठाकुर कह दीवान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग लय मारे। राख राख राख प्रा मेरे, मैं राखो कृपा तारे, नानक मैं तर अवर न काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक

प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया, हर राख ली उतराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, ओ जन्म मर निवार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया, हर पतत पावन नाम स्वामी ओ भगत पंजन गाया, हर हार हर उतारे जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले घर प्रव जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी घर प्रापाया, तिन पूछो घर की बाता, पाए लगो निद करो जो दरिया, हर मिलो कर्म विदाता, लिलाड लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्र आए मिले सुख पाया, सब केलबख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंक पाये वडभागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, सब सिद्ध साधक मुनजना, मन पावनी घर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो, रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेत्यो हर रायो, हरियान मिल्यो सदगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रा मस्त के तुर लिखया, गुरमती घर लिवलायो, पांच शब्द दर गए बाजया, हर मिल्यो मंगल गायो, पतत पावन नाम नर हर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ ज्यो नहीं गालिये, ज्यो डोन जरे गलायो, मत दे हर अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो, हर राम नाम में रहो लागो।

कोय, पूरे या सगल मंडल एक स्वामी सोय, करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ, माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, तन तन ओ राम बेन बाजे, मदर मदर तुन अनहद गाजे, रहाओ तन तन मेघा रोमावली, तन तन कृष्ण ओढ़े कामली।

तेरो बाप माधो तू तन केसो सामलियो बीठ लाए रखाओ कर तरे चक्कर बैकुंठ ते आए गृहस्थी के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गोतमनार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अधम अजात नाम देव तौ शरणागत आई अले सबे कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रघाओ एकल माटी कुंचर चीटी भाजन गए बो नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे एकल चिंता राख अनंता और तजो सवया सारे परमे नामा पहने कामा को ठाकुर को दासा रे राग मारू महला पहला कर पहला चौप दे एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंग गुर प्रसाद श्लोक साजन तेरे चरण की होए रहा सतूर नानक शरण तुहारिया।

मीर खाए तापी सन जाओ पखा फेरी पैर मलोवा जब तरह तेरा नाओ लूण खरामी नान कलाला बक्से तुद वड्याई आद जुगाद दया पद दाता तुद बिन मुक्त न पाई मारू महला पहला कोई आखे भूतना ओ कहे बेताला कोई आखे आदमी नानक बेचारा पया देवाना साका नानक बौराना हौ हर बिन अवर न जाना रहाओ तौ देवाना जानिए या पै देवाना होए एकी साहेब बारा दूजा अवर न जाने कोए तौ देवाना जानिए या एकाकार कमाए हुकम पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए तौ देवाना जानिए या साहेब तरे प्यार मंदा जाने आप को अवर पला संसार मारू महला पहला यो

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रघाव बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाणा सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है

प्रेनाम दृढ़ाय हर तीर्थ हर सबास रखाओ हर घर आप मिलाए गुर मैं दस्ते हर तन रास बिन गुर प्रेम न लभई जन वेखो मन रिजास हर गुर विते आप रखे हर मिले गुर साबास सागर भगत पंडार हर पूरे सदगुर पास सगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख कर परगास मनमुख पाग विहूणिया तिख मुइया कंधी पास गुरदाता दाता रहे ओ मांगो दान गुरपास किरीम चुन्ना मेल प्रभ मैं मनतन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू मोहल्ला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमुख हर दे समाणी जप हर हर कथा वडभागिया है उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुर पूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा निसदा कर गुरमुख अकथ कहानी ही रखाओ मैं मन तन खोज ठंडोलिया क्यों पाईए अकथ कहानी संत जिना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मिले पुरख सुजानी गुर पुरखे पुरख मिलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी वडभागी गुर सेवया हर पाया सुगड़ सुजानी मनमुख पाग विहूणिया तिन दुखी रहन विखाणी हम जाचक दीन प्रो तेरे मुख दीजे अमृत बाणी सतगुर मेरा मित्र प्रभ हर मिलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति हर कृपा नाम समाणी मारू मोहल्ला चौथा हर पाओ लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मेरे संगत श्रद्धा उपजे गुर सबदी हर चार।

दान आए, त्यागो सगला मान महत्ता, दास रेण शरणाए, कहो नानक हर मिल पे एक, महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस्त अहंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो, मुक्ते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुदत, चलते खबर ना पायो। रघाव सैन सीर पवन अर पानी, बजदा खिमा ने प्राते, पंच तत मिल पयो संजोगा, इन मैं कवन दोराते। जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो में पाई, जन्म मरण उसी कौहाय रे, ओहा आवे जाई। वर्ण चेन नाई किश रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजार है, तब एक एक अंकारा। मारू महला पंजवा, मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना काले हो, नाम रतन गुण हर बनजे, लाद वखर ले चाले हो। सेवक की ओढ़ किनभी प्रीत, जीवत साहेब सेव अपना, चलते रखो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा की नहीं ठाकुर, तिस्ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रे पीतर, उठ ओवाहू कौ दौरियो। आज्ञा मैं पूख, सोई कर सूखा, सो हरक नहीं जाने हो, जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथे ले माने हो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक कहो, सबरे हलत पलाता, तन सेवक सबल ओ आया, तिनान खसम पछाता। मारू महला पंजवा, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई, समथा का पाए बिश्रामा, मिट गई सगली ताई। आप मोहे जीवन पदवी पाई, जीत आव मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई। रघाव काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बैराई, सद हजूर हाजर है नाजर, कथे न पयो दूराई। सुख शीतल श्रद्धा सा पूरी, होए संत सखाई, पामन पतत किए खिन पीतर, महिमा कथन न जाई। निरपो पय सगल पय खोए, गोविंद चर

किसै बूझ जिन तू किया प्रकरण कारण एक रखाओ चेत मन में तस्यानप जोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महापौजल माहे तुलहो जाको लिखे उमार।

माया कीमत जन्म सरायो, आराम भजन नहीं लागे ओ रहाओ। जम को डांड परे सिरी ऊपर, तब सोवत तय जागे हो, ता होत आपके पछताए, झूठत नाहन पागेओ। ए चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागेओ। सोफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस मैं पागेओ। मारू अष्टपदियां, महला पहला, कार पहला, एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका, अड़सठ तीर्थ बहु कणा, प्रम थाके पेखा, साचो साहिब निर्मलो।

तले उगाए बैसे हो, शरम ना रहे हो शरीर, मां सागर नए व्यापे किने उतरे हो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन

तेणी संगम आठसठ अंक समाई हे। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदली

सोलड़े अज्ञानी गाए, जो जन्मे तिस सर पर मरना, किरत पया सिर साहा हे, संजोग वियोग मेरे प्रभु किए, सिर चो पाए दुखा सुख दिए, दो सुखी ते पए निराले, गुरमुख सील सुनाहा हे, नीके साचे के वापारी, ससौदा लय गुर विचारी, सच्चा वखर जिस तरह पल्ले, शब्द सच्चे ओ महा हे, काची सौदी टोटा आवे, गुरमुख वंज करे प्रापावे, पूंजी साबत रास सलामत, टूका जमका फाहा हे, तब को बोले अपन पाने, मनमुख दूजे बोल न जाने, अंधले कीमत अंधली बोली, आए गया दुख ताहा हे, दुख में जन्मे दुख में मरना, दुख ना मिटे बिन गुर की सरना, दुखी उपजे दुखी बिन से, क्या ले आया क्या ले जागा हे, सच्ची करनी गुर की सिरकारा, आमन जान नहीं जम तारा, डाल छोड़ तत्मूल पराता, मन साचा ओ माघा हे, हर के लोग नहीं जम मारे, ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कड़ अंतर पूजा, अवर न दूजा काहा हे, ओढ़ न कसने सिरत सजाई, ज्यों तुद पावे अरह रजाई, दरगे पैदे जान सुहेले, हुकम सच्चे पातशाहा हे, क्या कहिए गुण कसे कनेरे, अंत न पावे वडे वडेरे, नानक साच मिले पत राखो, तू सिर सहा पातशाहा हे, मारू मोहल्ला पहला दखनी, काया नगर नगरगढ़ अंदर, साचा वासा पुरग गनंदर, अस्त्र स्थान सदा निर्मायल, आपे आप्यो पाए दा, अंदर कोट छजे खट नाले, आपे ले वेवस्त समाले, बजरक पाट जड़े जड़ जाने, गुर शब्दी खोल आए दा, पीतर कोट गुभा कर जाई, नौ करथा पे हुकमर जाई, दसवें पुरख अलेख अपारी, आपे अलख लखाए दा, पौन पानी अग्नि एक वासा, आपे कीतो खेल तमासा, बल्दी जल निवरे किरपा ते, आपे जल निद पाए दा, तरत उपाय तरी तरमसाला, उद पद परलो आप निराला, पवने खेल किया सबथाई, कला खिंच टाहाए दा, पार अठारे मालन तेरी, चौर ठुले पवने ले फेरी, चंद सूरज दुए दीप कर आखे, सदकर सूर समाए दा, पंखी पंच उडर नहीं तावे, सफलो बिरख अमृत फल पावे, गुरमुख सहज रवे गुण गावे, हर हसचो चुगाए दा, चिल मिल छिलके चंदन तारा, सूरज किरण ना बिजल गयनारा, आकथी कथो चिन्ह नहीं कोई, पूर रया मन पाए दा, पसरी किरण जोत उजियाला, कर कर देखे आप दयाला, अनहद रोण चुनकार सदा धुन, निरपो कह करवाए दा, अनहद वाजे प्रंपो भाजे, सगल ब्यापर आपर छज, सब तेरी तू गुरमुख जाता, दरसोहे गुण गाए दा, आद निरंजन निर्मल सोई, अवर न जाना दूजा कोई, एक अंकार से मन पावे, होमें गर्भ गवाए दा, अमृत पिया सतगुर दिया, अवर न जाना दुआ पिया, एक को एक सो अवर परंपर, परख खजाने पाए दा, ज्ञान त्यास गैर गंभीरा, कोई न जाने तेरा चीरा, जेती है तेती तुझ जाचे, कर्म मिले सो पाए दा, कर्म धर्म सदगा तुम्हारे, वे प्रवाह अखुट पंडारे, तू दयाल कृपाल सदा प्रभ, आपे मेल मिलाए दा, आपे देख दिखावे आपे।

इनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई। एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद गिण नाही कोई।

चानन गुर मिले, दुख बिगजा ली ना ए पौड़ी, माया वेख ना पुल, तू मनमुख मूर्खा, चलद्या नाल ना चलई, सब झूठ दर्ब लखा, अग्ञानी अंत ना बूझई, सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उभरे

जगत ना चुर हीड़े सच चौ नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्सोन हर नाम समाने आपे भगती लाय होन गुर शब्द निशाने सरमुख सदा सोने सच्चे दर जाने एथे उथे मुक्त है जिन राम पछाने तन तन से जन जिन हर सेवया तिन हों कुरबाने सलोक महला पहला मैल कुचजी मरवड़ी काली मनो कसुद जे गुण होवन ता पिर रवे नानक अवगुण।

पौड़ी अपना आ पछाणिया नाम निदान पाया कृपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर चनी चाखिया अनस ठाक रखाया हर पी सदा तृप्त भये तृतना भुख गवाया सलोक मोहला तीजा फिर खुशगे तन रावगे तन उर नाम सिगार नानक तन आगे खड़ी सोभावंती नार मोहला पहला ससरे पेगे कंत की कंत अगम अथाहो नानक तन सुहागणी जो भावे वे प्रवाह पौड़ी तख्त राजा सोभ जे तख्ते लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से ए भूपत राजे न आखिए दूजे पाए दुख होई कीता क्या साल आईए जे जांदे बिलम न होई निचल सच्चा एक है गुरमुख बूझे तो निचल होई सलोक मोहला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाह नानक से सोहागणी जे सदगुर माए सुमागे मोहला तीजा मन के अधिक तरंग क्यों दर साहिब छुटिए जे राते सच रंग गूढ़े रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुटिए जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है क्यों कीमत कीजे आपे सिट सब साजियन आपे वरतीजे गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत कीजे गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हरस पीजे आमन जाना ठाकिया सुख सहज सुवीजे सलोक महला पहला ना मैला ना तुंदला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच महला तीजा सहज वनस्पत फुल फल पर वसे पैखंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जोजन लूजे मने स्यो से सूरे प्रधाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप शाना ज्ञानिया का यो महत है मन माये समाना हर जीव का महल पाया सच लाए ते आना जिन गुर प्रसादी मन जीतिया जग तिने जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग पवा धर कर भिख्या लेओ दरगे लेखा मंगिए केस किस उत्तर देओ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है ना।

जे लोचे सब कोए, नानक मन ही को मन मारसी, जे सतगुर भेटे सोए पौड़ी, दोवे तरफा उपाई होन, विच सगत से वासा, सगती किने ना पायो, फेर जन्म बेनासा, गुर सेवे है सांत पाई है, जप सास गिरासा, सिमरत सास्त सोध देख,

कीमत कहे कौन तू सृजा सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल राउन तू अपड़ कोई ना सके तू उबनासी जग उदरण तू थापे चारे जुग तू करता सगल तरण तुद आमन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रेण जिस होवे आप दयाल तिस लाभ है सदगुर चरण तू होर उपाय ना लभगी अवनासी सिष्ट करण दखणे महला पंजवा जे तू वत्ते अंगणे अब तरत सुहावी होए एक सकंते भारी मैंडी वात ना पुछे कोए महला पंजवा अबे टोल सुहावणे सौ बैठा अंगण मल पही ना वञे बिरथड़ा जो कर आवे चल महला पंजवा सेज विशाई कंत कू किया हब सीगार इती मंझ ना सुमावई जेगल पैरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवगी तू हुक्मी साजे सृष्ट साज सुमावगी तेरा रूप न जाई लखया क्यों तुझे ते आवगी तू सब मैं वरते आप कुदरत देखावगी तेरी भगत परे भंडार तोट न आवगी एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावगी जिस होवे आप दयाल तेस सदगुर सेवा लावगी कदे न आवे तोट जो हर गुण गावगी दखणे महला पंजवा जामू पसी हठ मैं पिरी बिहिंजे नाल हब्बे दुख उलायम।

जान ही दुर्जन सेती ने हो तू कै गुण हरंग मान ही महला पंजवा नानक जिस दिन कड़ी ना जीवना विसरे सरे ना बिंद तेस स्यो क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला पंजवा रत्ते रंग पार ब्रह्म कै मन तन अत गुलाल नानक विण नावे आलू दया जिती होर ख्याल पवड़ी हर जियो जां तू मेरा मित्र है तां क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुर भौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब

कर हीड़े एक आधार पियो संतन की रेण जित लभी सुखदा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाई है बिन सदगुर मनुमा ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे यो पापी मूल न तगे अय कर करे सो अय कर पाए एक कड़ी मोहत ना लगे चारे जुग में सोदया विण संगत अंकार ना पगे होमे मूल ना छुटे।

पंडिया कवन कुमत तो लागे बूढ़ो गे परिवार सगल स्यों आराम ना जपो अपा गे रखाओ वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खाल चंदन जस पार राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा।

मन मेरिया तू समझ अचेत ए आणिया राम ए मन मेरिया जट अवगुण गुणी समाणिया राम बहु साध लुभाणे किरत कमाणे विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर तरिये जाम डर मरिए।

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

मिलाए, अनदिन गुर गोपाल तिहाई, हम सतगुर विठों कुमाए, हम पाथर गुरनाव, बिग पौजल तारिये राम, गुरदेवो शब्द सुखाए, मैं मूड निस्तारिये राम, हम मूड मुग्ध किश मित नहीं पाई, तू

कारण जिन सेव्या गुरमत हरे तिनके कोट सा पाप खेन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दोग सा बिलसे जिन मन चित एक आराध्या तिनका जन्म सबल सब किया करते जिन गुरभजनी सच पाखिया ते तन जानवर पुरख पूरे जो गुरमत हर जाप पौ बिखम तारे सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हौ तिवे चला हमरे हाथ किश नाहे जा तू मिले पाहो आए मिला जिनको तू हर मिले स्वामी तब तिनका लेखा छुड़क गया तिनकी गणतन करे ओ को पाई जो

मन बिकसे ज्यो सुत मिल मात गल लावीए रे हम बारक घर पिता प्रा मेरे मुको दियो मती जित घर पावीए रे ज्यो बछरा देख गऊ सुख माने त्यो नानक।

सदगुर प्रसाद बिसरत नाहे मन ते हरी आबे प्रीत महा प्रबल पही आन विखे जरी रघाओ बूंद का त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम बस

इन ही लोग सुपारी संतो बन जा नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोल छूट गई संसारी रगाओ ताते लाए तो सच लागे साचे के व्योहारी साचे

कठिया मटिया संग न कछ ले जाए रखाओ। देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लव संग माए, मैं हट लग सब लोग कुटंब मेल, हंस अकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुरपाटन, बौर न देखे आए। कहेत कबीर आराम।

रूप रंग रेस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध को ममता, कठिन पीर अद पारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, साबद सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरो महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमलानी, नेत्री तुंद करण पै बैरे, मनमुख नाम न जानी।

को दर कार कभू न जानस, एको दर्श त्यारा, गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कहे विचारा, पैरों महला पहला, अगली रैन सोबत गल फाही, दिन सजंजाल गवाया, खेन पाल कड़ी नहीं प्रव जानिया, जिन एहो जगत उपाया, मान रे क्यों छूटस दुख पारी, क्याले आवस क्याले जावस, राम जपो गुणकारी रगाओ, ऊन दो कावल मानमुख मत होची, मन अंधे सिर तंदा, काल विकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गर फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, साबद सुरत नहीं पाई, सातर वेद त्रै गुण गए माया, अंधलो तंद कुमाई,

मुक्त नाम गुरमुख लहे, राम नाम बेन बिरथे जग जन्मा, बिख खावे बिख बोली बोले, बिन नावे निफल मन भ्रमना रखाओ, पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे, संध्या कर्म तिकाल करे, बिन गुर शब्द मुक्त खां प्राणी, राम नाम बेन उर्ज मरे, डांड कमंडल शिखा सूद तोती, तीर्थ गमन अद भ्रमण करे, राम नाम बिन सांत न आवे, जप हर हर नाम तो पार परे, जटा मुगट तन पसम लगाई, बत्र छोड़ तन नगन पया, राम नाम बिन तृप्त न आवे, किरत के बंधे भेख पया, जेते जी जंत जल थल महियल, जतर कतर तू सर्व जिया, गुर प्रसाद राख।

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुरसेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निकर वासा पाया, पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक निचल साचा एकू ना ओ मरे ना जाया।

अरहो अराम रसायन नित उड़ पीवो हार हार हार हार सुना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार पैरों महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल।

बिन श्रवणा कहां को सुनता, बिन नेत्रा कहां को पेख, ना बिना नर कही ना लेख, बिन विद्या कहां कोई पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़ ही चूरे।

दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खब गए कोरंगा, जो जो दिसे तो सो रोगी, रोग रहत मेरा सदगुर जोगी रहाओ। जेवा रोग मीन ग्रस आनो, बासन रोग पावर बिन सानो।

अंदरें रती ना पावे, बिन सदगुर रोग तथे ना जावे। पार ब्रह्म जिस की नींद आया, बां पकड़ रोगों कड़ लाया, टूटे बंधन सा संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। भैरो महला पंजवा, कीत आवे ता महा आनंद, कीत आवे ता सब दुख पंज, कीत आवे ता सरदा पूरी, कीत आवे ता कभे न चूरी। अंतर राम राय।

लोई, भगत हमारी सब नी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल की नी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एके रंग लीने, भैरो मोहल्ला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुरु प्रदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु।

मन प्रगट पया नाम लए पातन ते गया नाम लए सगल पुरबाया नाम लए अड़सठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुर उपदेशा तत् ज्ञान रखाओ नाम लए दुख दूर पराना नाम लए आत मूढ़ सो ज्ञाना नाम लए प्रगट उजियारा।

हम तेरे पिखारी दान दे दाताल तौ प्रसाद रंग रसमाने कड़कड़ अंतर तुम्हें सुमाने तुमरी कृपा ते जपगे नाव साध संग तुमरे गुण गाओ तुमरी दया ते हुए दर्द विनाश।

राम नाम रिद्ध दियो निवास सदा आनंद नाही किज सोग दुख दर्द न व्यापे रोग सब के तेरा तू करने हार पार ब्रह्म अगु अपार निर्मल शोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी जल थर महील रविया सोय नानक सब सुख प्रवते होय भैरो महला पंजवा मन तारा ता राम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूर्ण करने आठ पैर गावत भगवंत सब गुर दीनो पूरा मंत सोवड़ पागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरे संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी सो पतवंता जे आप शानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल निरहिन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण हृदय माए निवासा कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभु की सरना आप वित पाम सब कीने राम रसायन रसना चीने।

ब्रह्म का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

मेरी पटिया लिख दियो गोविंद मुरार। पुत्र प्रहलाद सिंह कहे आ माए, प्रवृत्त ना पड़ो रही समझाए।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाव विर माया नाव मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाव मेरे बंत पनाओ।

ओए अंगम प्रेंग माया मैं कापे, माया ऐसी मोहनी पाई, जेते जीते ते डकाई, अरहाओ पंखी मृग माया मैं राते, साकर माखी अ

राख रहे माना सब कोई चलन कहत है ऊहां ना जानू बैकुंठ है कहां अरहाओ आप का मर मन जाना बातन ही बैकुंठ बखाना जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग ना ही।

कोड चंद्र में करे चराक, तुरते तीस उजेवे पाक, नाभरे कूड ठाडे दरबार, धर्म कूड जाके प्रतहार, पवन कूड चौबारे सिर है, बाजग कोट सेज बिस्तर है।

विद्या कोट सबे गुण कहे, तउ पार ब्रह्म का अंत न लहे, बामन कोट जाके रुमावली, रामन सयना जयते शली, सहज कोट भो कर्त पुराण, दुर्योधन का मथिया मान, कंदर्व कोट जाके लवे न तरे, अंतर अंतर मनसा हरे, कह कबीर सुन सार्ग पान, दे अपय पद मांगो दान, भैरों बाणी नाम दियो जियो की, कार पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरी परमे नाम दियो इहो करना अंत रूप तेरे नारायण पर तान पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी जो ना

भगत जना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो, कर दूजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखाबंद जल सेती काज, जैसी

रेठानी दुट सवा मेल मंत्र उपाया करसे औध कनेरी गिर तार जाल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोप्यो मोए बताओ जो तुहे राख पीत पीतांबर तिर पवन तनी थंब माए हर पाखे हरनाग सृजन नखे बिदार्यो

कौ न माहर करता रहे, साल कड़ी जा बीती सुनी, अजो न आयो तिर पवन तनी, पाखंतन बाज बजायला, गरड़ चढ़े गोविंद आयला, आप

नाम देओ सबरे आसमाए, मिल हिंदू सब नामे पह जाए, जो अब की बार न जीवे गाए, ता नाम देव का पतिया जाए, नामे की कीर्त रही संसार, भगत जनाले उदरिया पार, सगल कले

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेवरांगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे, पौन

में इलावा होए, जिन सच सेवया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, भगत करे जन दे।

गुर शब्दी हर चेत सुपाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए,

अरहाओ गुर प्रसाद लागे नाम स्वाद काहे जन्म गवाब हो वैरवाद पुर कृपा कीनी चूका अवमान सहज पाए पाया अगर नाम उत्तम ऊंचा शब्द काम नानक वखाणे साच नाम बसंत मोहल्ला तीजा बनसत मौली चढ़िया बसंत इउ मन मोल्या सतगुरु संग तुम साच त्यावो मुद मना ता सुख पावो मेरे मना अरहाओ एत मन मौल्य पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एक को एक तब आख बखाणे हुक्मे बूझे ता

मुंह सत्संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हारस पुंज रहाओ सत्संगत साध दया कर मिल हो शरणागत साधु पंज हम डुबदे पात्र काढ़ लेहो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज हर उस्त तारो रिद अंतर स्वामी सत्संगत मिल बुद्ध लाइ हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विटों कुम वाइ जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देवो हर लाइ जन नानक मन तन अंध पया है गुर मंत्र दियो हर पंज बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सेव कर नमस्कार आज हमारे मंगल चार।

प्रभु देह साध संगत में यो विश्राम सदा हृदय जपी प्रा तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ मैं समाहे।

आगम आगम ऊचे ते ऊच, हम थोरे तुम बहुत मूच, जिंतु त्याया से गनी, जिंतु पाया से तनी, जिंतु सेव्या सुखी से, संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा, ते तू सेव जिन तू किया, तिस आराल जिन जियो दिया, तिसका चाकर होहे तिर डान ना लाग गए, तिसकी कार पोतदारी तिर दुख ना लाग गए, एवड पाग होहे जिस प्राणी, सो पाए यो पद निर्वाणी, रहाओ दूजी सेवा जीवन बिरथा, कशु न होइगे पूर्ण।

साधु संगत गुरे बताई, ऊहां जपिए केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम, सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान, हर कीर्तन में उत्तम तुना, नानक गुरमिल गाए गुना, बसंत महला पंजवा, जिस बोलत

लोभ मोह जीतो ऐसी खेल घर प्यारी, उठ स्नान करो प्रभाते सोए घर आराधे, बिखड़े दाव लंघावे मेरा सदगुर, सुख सहज से ती कर जाते, हर आपे खेले आपे देखे, हरे आपे रचन रचाया, जन नान गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कर आया। बसंत महला पंजवा हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जान है और ना दूजा जान है, जिसनू कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुदे पछाण, तेरिया भगतां कौ बलिहारा थान सो आवसदा प्रो तेरा, रंग तेरे आपारा अरहाओ, तेरी सेवा तुझ ते होवे और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग तरता, तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा, तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा, तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना, कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजवा, मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी, पिता पार ब्रह्म प्राप्त हनी मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ, ओपत परलो प्रवते होवे ए बिचारी हर जनी, नाम प्रभु के जो रंग राते काल में सुहिए से गनी, आवर उपाओ न को सूझे नानक तरिगे गुर बचनी, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद राग बसंत हिंडोल महला नावा, साधु इव तन मिथिया जानो या पीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो, रघाव इव जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो, संग त्यारे कछु न चाले ताहे का लपटानो, उसत निंदा दो पर हर हर कीर्त उर आनो, जन नानक सब ही मैं पूर्ण एक पुरख भगवानो।

कज बिगड़ो नाहन अज हो जाग रहाओ सब सुपने कह यो जग जान बिन से शिन में साची मान संग तेरे हर बस्त नीत निज बासर पजताहे मीत बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कार पहला दो तुकियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग

दुख सखाई गुणे बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हरस राखे पत ना साख तू आपे सुरता आप राख हर तारण देखे जाने आप आप पुराए किस कहो जाए गुर मिले बिरथा कहो माए अब गुण छोड़ो गुण कमाए गुर सबदी राता सच समाए सदगुर मिले मत उत्तम होए मन निर्मल हो मैं कड्डे तोए सदा मुक्त बंद ना सके कोए सदा नाम खाने और ना कोए मन हर के पाने आवे जाए सब में एको केश पहन न जाए सबको वर्ते हुक्म सुमाए दूसू सब तिसर जाए तू अपुल ना पुलो कदे नाहे गुर शब्द सुनाए मत अगाहे तू मोटो ठाकुर शब्द माहे मन नानक मानिया सच सलाहे

निर्मल नाव घर में घर जो देख दिखावे गुरमैली सो मैल बुलावे मन में मनुआ चित में चीता ऐसे घर के लोग अतीता हर्ग सोगते रहे निराशा अमृत चाख हर नाम निवासा आप शान रहे लिवलागा जन्म जीत गुरमत दुख भागा गुर दिया सच अमृत पीवो सहजे मरो जीव।

तै लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचारे कोए। एबद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा, अनक जन्म प्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद पज

कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार, मन उदरण का साजनाहे, पाबंद नित पौत जागे, ईट मीत को सखा नाहे, आ बीज आपे ही खाहे, जाके तीने होत बेकार, ते छोड़ चलिया खिन मह गवार, माया मोह मोह भरमिया, किरतरे कर करमिया, करने

देव जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, ए देही के अधिक काम। कह कबीर पज राम नाम, जोए खसम है जाया।